आज आप सुनेंगे एंटन चेखव की रूसी कहानी द प्रपोजल का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर विवाह का प्रस्ताव। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं कामिनी कौशल, विनोद शर्मा और कमलाकर दाते। ये नाटक मधुप शर्मा के निर्देशन में विविध भारती के स्टूडियो में 1966 में रिकॉर्ड किया गया था। आइए सुने नाटक विवाह का प्रस्ताव।

0: माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ दस्तक देकर ही अंदर चला आया।
1: और हम भी तुम्हें यूं ही बाहर नहीं जाने देंगे। आओ बैठो आइवन लोमोव।
0: धन्यवाद।
1: आइवन, तुमने तो हमें भुला ही दिया।
0: जी, एक उलझन के कारण मैं इधर आ नहीं पाया, इसके लिए बहुत लज्जित हूँ। लेकिन विश्वास कीजिए, आपकी याद सदा मेरे साथ रहेगी।
1: और ये तुम्हारा स्नेह है जो तुम हमें अपना समझते हो। मगर आइवन, आज खैर तो है, ये फर का नया कोट, ये रंग बिरंगी कराकली टोपी और ये सफेद दस्ताने, आज तुम जा कहाँ रहे हो?
0: जी कहीं भी तो नहीं, बात यह है कि मैं आपकी सेवा में एक प्रस्ताव लाया हूँ।
1: अच्छा,
0: अब आपसे कैसे कहूँ?
1: तो और कौन कहेगा?
0: ये भी ठीक है, और कौन कहेगा? जी मैं ही कहूँगा, मैं ही कहूँगा। लेकिन थोड़ा पानी पिलवा दीजिए। हाँ, मुझे
1: अभी लो।
0: मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, डरता हूं अगर आपने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया तो मेरा क्या होगा?
1: पानी।
0: धन्यवाद।
1: अब ये मुझसे कुछ रुपया उधार मांगेगा और मैं इसे अंगूठा दिखा दूंगा।
0: देखिए, मैंने कई बार देखा है, महसूस किया है कि इस दुनिया में जितना आपको मेरा ख्याल रहता है किसी को नहीं रहता। मैं आपके इस अपार स्नेह के योग्य तो नहीं हूं।
1: आइवन, आज तो तुम्हारी बातें भी तुम्हारी पोशाक की तरह बिल्कुल नहीं है।
0: जी जी जी, ये बात नहीं है।
1: तो वो बात क्या है?
0: वो बात ये है।
1: हाँ, हाँ?
0: अभी कहता हूँ।
1: कहो।
0: बस मैं कह नहीं जा रहा हूँ।
1: अच्छा,
0: जहाँ हालत तक तो आ गई है
1: तो जबान पर ले आओ।
0: अच्छा,
1: शाबाश।
0: अपनी बेटी नतालिया का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए।
1: आइवन, मेरे प्यारे आइवन, एक बार फिर कहो जी, कहीं मेरे कानों ने वो तो नहीं सुन लिया जो पिछले कई वर्षों से मेरे दिल में था। कहो ना आइवन।
0: फिर किस मुंह से कहूं, कहां आप इतने बड़े जमींदार और कहां मैं आपका एक पड़ोसी छोटा सा जागीरदार।
1: ऐसा न कहो आइवन, ऐसा न कहो, जो जहां है वो वहीं रहेगा। लेकिन तुम पहले मेरे गले से लग जाओ। मैंने सदा तुम्हें अपनी बेटी नितालिया की तरह चाहा। अरे, मैं अभी तक यहीं क्यों खड़ा हूं? आइवन, तुमने देखा, मारे खुशी के मैं ये भी भूल गया कि मुझे नितालिया को तुम्हारे आने की खबर करनी चाहिए।
0: तो क्या नितालिया मुझे पसंद कर लेगी?
1: क्या कहते हो आइवन, तुम जैसे स्वस्थ सुंदर और नए नए कोट पहनने वाले गुलगुले जवान को भला कौन पसंद नहीं करेगा? मैं अभी नितालिया को भेजता हूं।
0: जी। चोबोकोप चले गए, अब नितालिया आएगी। ये क्या? अरे, मैं तो सिर से पांव तक कांप रहा हूं। अरे बाप, मेरा सारा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हुआ जा रहा है। ये क्या? मेरे होंठ कांप रहे हैं, मेरी बाहीं आंख भड़क रही है।
2: अरे, यहाँ तो आइवन लोमो विराजमान है।
0: आपको आपको आश्चर्य हुआ कुमारी नितालिया?
2: जी हाँ।
0: क्या?
2: आप पर नहीं, बाबा की बात पर।
0: बाबा की बात पर?
2: जी हाँ, बाबा बोले कोई मटर खरीदने आया है।
0: ओह।
2: और मैं जल्दी में इन मैले कपड़ों में ही यहाँ चली आई। अंदर आंगन में मटर की फलियों में से दाने निकाल रही थी।
0: जी।
2: आपके लिए कुछ खाने को लाऊं?
0: जी जी जी, आप कष्ट न करें, मैंने अभी खाना खाया है, आप कृपया बैठ जाएं तो।
2: लीजिए, बैठ गई।
0: जी।
2: आज तो आप अपने घर से खूब बन ठन कर निकले हैं।
0: जी।
2: सच, इन नए कपड़ों में तो आप देखने में बहुत भले लगते हैं।
0: कुमारी नितालिया।
2: जी।
0: मेरी मेरी मेरी आपसे एक प्रार्थना है।
2: कहिए।
0: जी, मैं आज बहुत ठंड पड़ रही है
2: आपके लिए।

0: कंबल लाऊं?
1: जी नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता था।
0: बात क्या है? आप इस तरह घबरा क्यों रहे हैं?
1: देखिए कुमारी मिथालिया, मैं आपके बाबा को तब से जानता हूँ जब आप अभी पैदा भी नहीं हुई थी, और ये तो आप भी जानती हैं कि आज मैं जिस जागीर का मालिक हूँ वो मुझे मेरे नाना नानी से मिली थी। मेरा मतलब है, मैं कहना ये चाहता था कि मेरे नाना नानी भी आपके बाबा को बहुत चाहते थे और आज भी हमारे घरों के आपसी संबंध बड़े अच्छे हैं। देखिए ना, आपके घर की दीवार मेरे घर की दीवार के साथ लगती है, आपके खेतों के साथ मेरे खेत हैं, आपकी सफेदा जमीन के किनारे मेरा चेरी का बगीचा खड़ा है।
0: क्षमा कीजिए
1: जी,
0: क्या वो चेरी का बगीचा आपका है?
1: जी हाँ, क्यों?
0: यूं नहीं, सोच कर बताइए।
1: आप भी कमाल करती हैं, भला इसे सोचने की कौन सी बात है? और फिर क्या मेरे सोचने पर मेरा वो बगीचा किसी दूसरे का बन जाएगा?
0: लेकिन जो बगीचा हो ही दूसरे का, वो आपका कैसे बन सकता है?
1: मैं समझा नहीं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं?
0: इसलिए कि वो बागीचा हमारा है।
1: अजी, मैं चेरी को उस बागीचे का जिक्र कर रहा हूँ जो आज तक कभी हरा नहीं हुआ, जिसके एक सिरे पर आपकी सफेदा जमीन है और दूसरे सिरे पर खाई है।
0: जी हाँ, मैं भी उसी बागीचे के लिए कह रही हूँ कि वो हमारा है।
1: कमाल है, ये तो मैं आज ही सुन रहा हूँ कि वो बागीचा आपका है।
0: और मैंने भी आज पहली बार सुना कि वो आपका है।
1: लेकिन मेरे बगीचे पर आप अपना कब्जा कैसे जता सकती हैं?
0: अरे, मगर वो बागीचा आपका कब से हुआ?
1: जब से मैंने होश संभाला।
0: फिर जब से आपने होश संभाला है, आप झूठ को सच समझ रहे हैं।
1: जी नहीं, आप अब सच को झूठ समझ रही हैं। देखिए कुमारी मिथालिया, मेरे पास ऐसे कागजात हैं जिनमें ये साफ साफ लिखा है कि मेरी नानी की दादी ने वो बागीचा आपके दादा के काश्तकारों को बिना पट्टा लिखवाए खेती करने के लिए दिया था, और आपके दादा 40 साल तक हमारी उस जमीन की कमाई खाते रहे, और फिर आप ही की तरह जब आपके दादा ने भी हमारी उस जमीन का मालिक बनने की कोशिश की तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी।
0: देखिए, मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ जो मैं आपकी इस मनगढ़ंत कहानी पर विश्वास कर लूं।
1: मैं जानता हूँ कुमारी निताली, आप इतनी बुद्धिमान भी नहीं है जो किसी दूसरे की संपत्ति पर अपना हक जताना छोड़ देंगी।
0: आइवन, इस प्रशंसा के योग्य केवल आप हैं।
1: जी,
0: आपका मुंह बंद करने के लिए मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि वो सूखा सड़ा बागीचा जिसकी कीमत 300 रूबल से किसी भी हालत में ज्यादा नहीं है, मैं आपको भेंट कर सकती
1: हूँ। कुमारी निथालिया, मैं आपकी उदारता का कायल हूँ, लेकिन आपको मेरी ही संपत्ति मुझे भेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। वो बगीचा तो मैं आपको भेंट कर सकता हूँ, मगर अब प्रश्न सिद्धांत का है, न्याय का है।
0: अन्याय भी ये है कि न्याय आप कर रहे हैं। 300 साल से जो बागीचा हमारे अधिकार में चला आ रहा है, आज उसे आप अपना बता रहे हैं।
1: फिर वही बात, आप किसी दूसरे की सुनती भी तो नहीं है। कुमारी निताली, हुआ यूं था कि आपके परदादा के काश्तकारों ने मेरी नानी की दादी को मकान बनाने के लिए ईंटें पकाकर दी थी, इसलिए कुछ बख्शीश के तौर पर मेरी नानी की दादी ने उन्हें।
0: फिर वही दादी की नानी, नाना के दादा। अब मैं आपसे और कितनी बार कहूं कि वो बागीचा हमारा है, हमारा
1: जी
0: है।
1: नहीं जी, नहीं जी, नहीं, वो मेरा है। आप सुनिए तो, वो हुआ यूं था।
0: आइवन, अगर आप लगातार 2 दिन तक इसी तरह बहस करते रहेंगे और अपने घर से एक बढ़िया कोट पहनकर आते रहेंगे तो भी ये बागीचा हमारा ही रहेगा।
1: देखा है ना सीना जोरी। कुमारी निकालिया, मैंने आज तक कभी किसी की संपत्ति पर अपना हक नहीं जताया, मैंने आज तक कभी किसी की जमीन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश नहीं की।
0: इसीलिए आप अपनी ईमानदारी का सिला हमसे वसूल करना चाहते हैं?
1: ओ, मेरे गले में कांटे उगे हैं। ठहरिए, जरा पानी पी लूं तो बताता हूँ आपको। मैं फिर कहता हूँ कि वो बागीचा मेरा है, मेरा है।
0: ये चीख आपकी है, मगर बागीचा हमारा है।
1: जी नहीं, वो मेरा है।
0: वो बगीचा हमारा है, और मैं आज ही अपने कारिंदों को वहाँ की सारी घास काटने के लिए भेजती हूँ।
1: क्या?
0: हाँ, मेरे आदमी अभी वहाँ पहुँच जाएंगे।
1: तो कान खोल कर सुन लीजिए, अगर मेरी धरती पर किसी ने कदम रखा तो मैं उसकी खाल में भूस भरवा दूंगा।
0: इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने अंजाम से वाकिफ हैं?
1: मैं कहता हूँ इन बातों में कुछ नहीं रखा। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि वो बगीचा मेरा है, मेरा है, मेरा है।
0: आइवन, अगर ये घर मेरा ना होता तो आप इससे भी कहीं ज्यादा ऊंची आवाज में चीख सकते थे, चिल्ला सकते थे, दहाड़ सकते थे।
1: कुमारी निथालिया, कुमारी निथालिया, अगर मुझे दिल का रोग ना होता, अगर मेरे पुट्ठों में दर्द ना होता तो आज मैं आपको बता देता कि किसी की संपत्ति पर आंख रखने का क्या परिणाम होता है। देखिए, अब भी भलाई इसी में है कि सीधी तरह से मान लीजिए कि वो बागीचा मेरा है।
0: नहीं, हमारा है।
1: जी नहीं, मेरा है।
0: हमारा है।
1: मैं कहता हूँ मेरा है।
2: जी क्या हो रहा है?
0: बाबा, आप जरा इनकी समझ में ये बिठाइए कि हमारा वो चेरी का बगीचा किसका है?
2: हमारा है और किसका?
1: आप अपनी बेटी की बोली में बोल तो रहे हैं, मगर कुछ पता भी है कि मेरी नानी की दादी ने यह बगीचा आपके दादा के काश्तकारों को थोड़ी सी मुद्दत के लिए ऐसे ही खेती करने के लिए दिया था, और फिर 40 वर्ष तक वे अपना पेट और आपके दादा का घर भरते रहे।
2: आइवन, तुम्हें भी ये पता होना चाहिए कि उन काश्तकारों ने तुम्हारी दादी को उस बगीचे के पट्टे की सारी रकम चुका दी थी, विश्वास न हो तो गांव के पटवारी से या तहसीलदार की कचहरी से जाकर मालूम कर लो कि उस जमीन का लगान आज तक कौन भरता रहा।
3: फिर तो आप सरकार को भी धोखा देते रहे।
2: धोखा? हाँ, अपनी जमीन का लगान तुमसे सरकारी खजाने में भरवा के हम तुम्हें अवश्य धोखा दे सकते थे,
0: लेकिन हमने ऐसा भी नहीं किया।
3: मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता कि वो बागीचा मेरा है और मेरे पास इसका सबूत है।
2: नहीं आइवन, तुम ये साबित नहीं कर सकते।
3: क्यों नहीं कर सकता?
2: आइवन, तुम इस भ्रम को अपने दिल से निकाल दो कि हम तुम्हारा वो बगीचा हड़प कर जाना चाहते हैं। और अगर तुमने यूं ही चिल्लफों मचाकर यह साबित करने की कोशिश की कि वो बगीचा तुम्हारा है, तो मैं उसे तुम्हारे हवाले करने की बजाय अपने किसी काश्तकार को यूं ही दे
3: दूंगा। जी हाँ, क्यों नहीं। बेटी भेंट करने की बात कहती है और बाप किसी और को दे डालने की धमकी देता है। मैं पूछता हूं, किसी दूसरे की संपत्ति को आप इस तरह कैसे लुटा सकते हैं? क्या अधिकार है आपको?
2: ये तो मैं ही जानता हूं मुझे अधिकार है या नहीं, लेकिन तुम अपनी जबान को काबू में रखो। मैं ऊंची आवाज सुनने का आदी नहीं।
3: तो हो जाएंगे, अब आपका वास्ता मुझसे पड़ा है।
2: आइवन, यूं ही आवेश में मत आओ।
3: वाह वाह, आप तो पड़ोसी होने के नाते मेरा बागीचा हड़प कर जाएं और मैं आवेश में भी नहीं।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, तुम चुप हो जाओ।
3: मैं तो जैसे आपके इस आदेश की प्रतीक्षा में ही था। मैं कह देता हूं, आप मेरे पड़ोसी नहीं हैं, मेरे पड़ोस में रहने वाले डाकू हैं।
2: क्या कहा?
0: बाबा बाबा, इन्होंने आपको डाकू कहा?
2: अब मैं इसे क्या कहूं?
3: जो मैंने आपको कहा है आप वही अपनी बेटी से भी कहिए।
0: बाबा, आप कुछ कहने के बजाय कुछ कीजिए।
2: मैं कुछ करूं?
0: हाँ।
2: लेकिन मैं क्या करूं?
0: आप अपने कारिंदों से कहिए कि वो बागीचे की सारी घास खोद लाएं।
3: खोद लाएं? कुमारी नितालिया, घास खोद लाना इतना आसान नहीं है।
2: इस बारे में आप अधिकार से बात कर सकते हैं।
3: आप मेरी यूं खिल्ली ना उड़ाइए। मैं अब इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा।
0: और जब इंसाफ होगा आप अदालत का दरवाजा तोड़ डालेंगे।
2: क्योंकि तुम इंसाफ उसे मानते हो जो इंसाफ के साथ खुद बड़ी बेइंसाफी।
3: हाँ, इसका फैसला अब अदालत में ही होगा।
2: आइवन, मैं तुम्हारी मुकदमेबाजी की लत से वाकिफ हूँ और मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे पुरखों की सारी जिंदगी अदालतों में ही।
3: देखे, मेरे पुरखों का अपमान मत कीजिए, उनकी ईमानदारी के चर्चे आज भी लोगों की जबान पर हैं। हाँ, आप अपने चचा की ईमानदारी का डंका जरूर बजाइए जो गबन के अपराध में आज भी जेल में आटा पीस रहे
2: हैं। तुम्हारा तो दिमाग चल गया।
0: इनके घराने में ठीक किसका था?
2: हाँ, इसका दादा संकी।
3: हाँ, दादा संकी था। आपकी माँ का भी तो ऊंट की तरह कोहान निकला हुआ था। मेरा दिल पानी।
2: अरे, तुम्हारा तो बाप पत्तेबाज था, क्रॉसवर्ड पजल भरा करता था।
0: आपकी नानी के मुंह में जबान नहीं ततैया मिस थी और वो हर किसी को काटने को दौड़ती थी।
3: मेरी बहन ठंग के तार झंझनाने लगे हैं और आप मीठी जबान से हर किसी का गला काट रहे हैं। और दिल, और ये कौन नहीं जानता कि चुनाव से पहले मुझे कुछ नहीं सुझाई दे रहा। मेरी टोपी कहाँ है?
2: अरे तो मक्का अरे भी,
3: लेकिन आपसे कोई मुकाबला नहीं है। ओ, मेरा दिल, यही मेरी टोपी। अब दरवाजा किधर है?
2: घसीट कर ले जाओ अपने आप को यहाँ से। इतना और सुनते जाओ। हमारे घर फिर कभी पांव रखा तो हाथ से टांग से हाथ धो बैठोगे। हाँ,
0: और अब यहाँ से सीधे अदालत में ही जाना। हाँ,
2: चला गया कमीना कहीं का।
0: हमें इस रीच पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, इससे सदा चौकन्ना रहना चाहिए।
2: और आस्तीन के सांप का हमें सर कुचल देना चाहिए।
0: हाँ, नहीं तो ये हमारी संपत्ति पर कुंडली मार कर बैठ जाएगा।
2: निर्लज्ज का दुस्साहस तो देखो।
4: बोला, आपकी सेवा में एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ।
0: कैसा प्रस्ताव?
2: अरे, ब्याह का प्रस्ताव। कमीना, जलील, गुंडा कहीं का मेरी बेटी से ब्याह करना चाहता था।
0: पहले क्यों नहीं बताया?
2: अरे, मैं क्या बताता? तुमने खुद नहीं देखा कि वो रीच का बच्चा कैसा छैला बनकर आया?
0: वो मुझसे ब्याह करना चाहते थे।
2: अरे अरे, क्या हुआ बेटी नितालिया, क्या हुआ?
0: बाबा बाबा, उन्हें बुला लाइए, अभी बुला लाइए।
2: क्या, अब उसे मैं बुलाने जाऊं?
0: हाँ बाबा, अभी जाइए, अभी जाइए बाबा। ओह, मेरा सर चकरा रहा है, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है।
2: अरे मगर बेटी, अभी हमने उसे यहाँ से इतने शानदार स्वागत से निकाला और अब वो दोबारा यहाँ आने के लिए कभी नहीं मानेगा।
0: बाबा।

0: को भी जाकर उन्हें किसी भी तरह मना लाइए, मैं उनके
1: अरे बेटी निताई, होश में आओ, ये क्या पागलपन है। हे भगवान, अब मैं कहाँ डूबने जाऊं।
0: इससे पहले उन्हें बुला लाइए।
1: जाता हूँ बाबा, जाता हूँ, जा रहा हूँ।
0: आज उन्होंने फर का कैसा बढ़िया कोट पहन रखा था, फिर भी हमने उनका ऐसा सम्मान किया। कौन जाने अब वो आएंगे भी या नहीं।
1: निकालिया बेटी, हेलो, अब तुम अच्छी हो जाओ, वो आ रहा है। कम वक्त अभी सीढ़ियों पर ही था, मगर अब मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, अब मैं तुम्हारे मामले में कभी नहीं बोलूंगा, तुम जानो और वो जाने।
0: वो कब आएंगे।
1: अरे भाई, उसके पर नहीं, पैदल आ रहा है।
0: आप उन्हें उठा कर क्यों नहीं ले आए।
1: ओ भगवान, तुम एक अच्छे भले आदमी को बेटी का बाप क्यों बना देते हो। मेरी तो मिट्टी खराब हो गई।
0: कैसे।
1: तुम्हारे कारण पहले मैंने उसे जली कटी सुनाई, उसे अपमानित किया और फिर उसे खड़े खड़े अपने घर से बाहर निकाल दिया। और अब
0: क्या मेरे कारण।
1: और नहीं तो क्या।
0: बाबा, अब आप मेरे साथ तो ऐसा व्यवहार ना कीजिए।
1: अच्छा बाबा, अच्छा, सारा दोष मेरा ही था। एक बेटी का बाप निर्दोष हो ही कैसे सकता है, और फिर वो भी अपनी बेटी की नजर में। लो, वो आ गया और मैं अपने कमरे में जा रहा हूं।
2: मेरा दिल बड़े शोरों से धड़क रहा है।
0: और मेरे दिल को बड़ा चैन मिला है आपको यहाँ अपने पास देखकर।
2: वो बगीचा मेरा है।
0: जी हाँ, वो बगीचा सचमुच आप ही का है। आपके जाने के बाद मुझे याद आया।
2: मेरी टांगें सुन्न हो गई हैं, लेकिन वो बगीचा मेरी नानी की दादी से पहले भी हमारा था।
0: जी हाँ, जी हाँ, हमसे भूल हो गई। आप कृपया क्षमा कर दी।
2: बात असूल की थी, सिद्धांत की थी, नहीं तो आप जाने सूखा हुआ बगीचा जो कभी हरा नहीं हुआ चीज ही क्या है।
0: आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। अब आप कोई और बात कीजिए।
2: तो ठीक है, लेकिन देखिए ना, इसके अतिरिक्त मेरे पास ऐसे कई प्रमाण पत्र हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि मेरी नानी की दादी ने आपके दादा के काश्तकारों को।
0: जाने दीजिए, मैं अपनी भूल पर पहले ही बहुत लज्जित हूँ। ये बात कैसे चलाऊं। आप शिकार खेलने के लिए कब जा रहे हैं।
2: मैं फसल की कटाई के बाद मैं मुर्गाबी का शिकार खेलने जाऊंगा, लेकिन लेकिन अब मैं क्या शिकार खेलूंगा।
0: क्यों,
2: अपने डब्बू को तो आपने देख ही रखा है ना, उस बेजबान की अब टांग भी टूट गई है।
0: ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ।
2: जी,
0: मगर उसकी टांग टूट कैसे गई।
2: ठीक से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है मेरे डब्बू की टांग किसी कुत्ते ने ही तोड़ी है, क्योंकि कुत्ता कुत्ते का बैरी होता है। और मेरे डब्बू की टांग क्या टूटी, मुझे यूं लगता है जैसे मेरी ही कमर टूट गई हो। मैंने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था, और अब जब मुझे उसकी जरूरत थी वह बेचारा अपाहिज हो गया। भाग्य पर किसी का जोर नहीं चलता।
0: डब्बू आपने लिया किससे था।
2: अजी, ये पहले मेरे नोव के पास रहता था, तब ये अभी ढंग से भौंकना भी नहीं सीख पाया था कि इत्तफाक से इस पर मेरी नजर पड़ गई, और मैं इस पर अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हो गया। उधर मेरे नोव इससे बिछुड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन जब मैंने मेरे नोव के सामने 125 रूबल का ढेर लगा दिया तो वो कुछ ना कह सका।
0: 125 रूबल।
2: हाँ, आपको अचंभा हुआ।
0: जी हाँ, इतने में तो हाथी आ जाता।
2: कुमारी निथालिया, मैं इसे हाथी का बच्चा ही समझ कर लाया था।
0: तब आपने कुत्ते के नहीं अपनी समझ के दाम चुकाए थे, नहीं तो मेरे बाबा मेरे लिए कालू 50 रूबल में लाए थे। और हमारा कालू आपके डब्बू से 1000 गुना अच्छा है।
2: मुझे तो इस पर भी संदेह है कि आपको 1000 तक गिनती आती है, नहीं तो आप अपने कालू का मेरे डब्बू से कभी मुकाबला नहीं करती।
0: मुकाबला हो ही कैसे सकता है, शेर का भेड़ से क्या मुकाबला।
2: जी
0: आइवन, हमारा कालू अभी बच्चा है। हाँ। एक बुरा कुत्ता बनने में उसे कुछ समय लगेगा, लेकिन अब भी हमारे सारे प्रांत में ऐसा कोई कुत्ता नहीं जो जीदारी और फुर्ती में हमारे कालू का सामना कर सके।

0: सुन लीजिए कुमारी निताली, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके कालू का जबड़ा बहुत छोटा है और ऐसे कुत्ते बच्चों की गेंद भी उठाकर नहीं ला सकते।
1: जबड़ा छोटा है?
0: जी
1: ये बात भी मैंने आज पहली बार सुनी है।
0: विश्वास कीजिए, आपके कालू का निचला जबड़ा उसके ऊपर के जबड़े की अपेक्षा बहुत छोटा है।
1: क्या आपने उसे कभी नाप कर देखा है?
0: मैं अब नाप कर दिखा सकता हूँ, आप उससे अपनी टांग पर कटवाइए। वैसे मैं ये मानता हूँ कि ऐसे कुत्ते जिनके जबड़े छोटे होते हैं वे दौड़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन शिकार पर उनकी पकड़ अच्छी नहीं होती।
1: जरा ये भी फरमाइए, आपका वो लंगड़ा खाज का मारा डब्बू
0: जी
1: किस राजघराने में से है, किस कुल का दीपक है?
0: आपको जब जरूरत होगी तो मैं आपको उसका गोत्र तक बता दूंगा, उसकी जन्म कुंडली भी दिखा दूंगा। अभी तो इतना ही सहन कर लीजिए कि डब्बू उस किस्म का कुत्ता है जो अपने मालिक के लिए आर्थिक संकट की स्थिति में समुद्र से मोती निकाल कर ले आते हैं, और आपका वो कालू घर वालों को काटे और चोर के आने पर दुम दबा कर भागे।
1: स्वामी भक्ति की ऐसी परिभाषा केवल आप ही कर सकते हैं, मगर हमारा कालू ऐसा नहीं है।
0: ना ऐसा नहीं है तो ऐसा वैसा होगा?
1: आप होंगे, होंगे क्या आप हैं?
0: जी
1: भला ये भी कोई बात है, पहले हमारे बगीचों को अपना बताया और अब अपने खाज मारे लंगड़े डब्बू को हमारे कालू से बढ़िया बता रहे हैं।
0: अच्छे को तो अच्छा कहा ही जाएगा।
1: लेकिन आप ऐसा कह नहीं रहे, आपका दिल मानता है कि हमारा कालू कुत्तों का बेताज बादशाह है, लेकिन आप फिर भी अपने लंगड़े की शान बघारे चले जा रहे हैं।
0: यही बात तो मैं अपने डब्बू और आपके बारे में भी तो कह सकता हूँ।
1: लेकिन सच क्या है?
0: आप ही कहिए कि आपके कुत्ते का जबड़ा छोटा नहीं?
1: कहाँ छोटा है?
0: छोटा है।
1: नहीं है, नहीं है, नहीं है। और मेरा मेरा बस चले तो मैं आपके डब्बू को कमेटी वालों से गोली लगवा।
0: और मेरा बस चले तो मैं वही गोली, मेरा दिल फिर डूबने लगा।
1: आपको कुत्तों के बारे में इतना ही पता नहीं है कि
0: वो मेरा दिमाग फट रहा है। अब आप चुप हो जाइए।
1: जब तक आप ये ना मानेंगे कि हमारा कालू आपके डब्बू से हजार गुना बढ़िया है, मैं कभी चुप नहीं
0: होऊंगी। यही बात है तो बेशक चिल्लाइए, चीखिए, लेकिन मैं आपके उस मरियल कुत्ते की शक्ल के मेमने को कुत्ता नहीं कहूंगा। अगर वो आपकी संगत में कुछ दिन और रह गया तो वो दिन दूर नहीं जब वो बावला हो जाएगा। ओ मेरा कंधा, मेरी आंखें, अरे गणपति, गणपति, गणपति।
1: और आपका कुत्ता तो जैसे टांग तोड़वा कर अमर हो गया है और अब उसे कुछ होगा ही नहीं।
0: ओ मैं कहता हूँ खामोश हो जाइए, दुख से मेरा दिल फटा जा रहा है।
1: अब मैं चुप नहीं हूँगी।
0: अरे अरे अरे ये फिर क्या हो रहा है?
1: बाबा बाबा आप सच सच कहिए, हमारा कालू अच्छा है या इनका लंगड़ा?
0: पहले आप ये बताइए आपके कालू का जबड़ा छोटा है या नहीं। पक्षपात किए बिना कहिएगा कि कालू का जबड़ा छोटा है या नहीं।
2: है, लेकिन फिर क्या हुआ पता है? हमारे कालू जैसा बढ़िया कुत्ता सारे प्रांत में नहीं।
0: मेरे डब्बू को छोड़कर आप ऐसा दावा जरूर कर सकते हैं।
2: हाँ, तुम्हारा डब्बू भी बड़ा गुणवान है। उसके कान खड़े और शरीर गठीला है, पिछली टांगे पतली लंबी सुडोल है, लेकिन उसमें दो ऐसी त्रुटियां हैं जिसके कारण उसे कुत्ता कहना एक अच्छी नस्ल के कुत्ते का अपमान कर।
0: देखिए देखिए देखिए, मुझे दिल की बीमारी है, वास्तविकता को झुटलाने की कोशिश न कीजिए। कुत्तों की वार्षिक दौड़ में मेरा डब्बू राजा साहब के कुत्ते के बराबर रहा था और आपका वो कालू दौड़ दौड़ कर पेड़ की छांव में जाकर बैठ गया।
2: तो बेचारा और क्या करता, दौड़ शुरू होने से पहले राजा साहब के कारिंदे ने उसे हंटर जो मारा था।
0: अरे काश वो उसे गोली मार देता।
2: आइवन ये भूलो कि तुम्हें दिल की बीमारी है। हाँ। और मुझे गुस्सा बहुत आता है। और गुस्से की हालत में मैं बुरा भला बल्कि भला।
0: आप अपने कुत्ते की हिमायत में मुझे धमका रहे हैं। अरे मेरा दिल फिर बड़ा जोर धड़कने लगा। अरे हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल,
1: हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। इस दिल से ये जंगल में शिकार खेलने जाएंगे बाबा। अजी आप, मैं कह रही हूँ रसोई घर में बैठकर मक्खियां मारा कीजिए।
2: मक्खियां उड़ाने के लिए कहो बेटी, इनका दिल बड़ा कमजोर है। आइवन, मैं तुम्हें जंगल में जाकर शिकार खेलने से रोकता नहीं। क्या पता कोई जानवर तुम्हारा शिकार बनने से पहले तुम्हें ही अपना शिकार बना डाले।
0: अरे शिकारी को जानवर अपना शिकार बना ले और जानवर को अपना शिकार मैं बना लूं, ऐसा भी हो सकता है अगर किसी रात आप मेरे साथ जंगल में शिकार खेलने चले।
2: आइवन, मुझसे ऐसी बातें कहते तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
0: जब आप मुझसे ऐसी बातें बड़े गर्व से कहते हैं तो मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए?
2: तुम्हारा तो सर फट गया।
0: देर मेरी कितनी धरती है, लेकिन कारण भी तो बताइए।
2: एक मूर्ख क्या समझेगा,
0: और जो स्वयं न समझ सके और दूसरों को समझा न सके उससे तो आप कुछ कहेंगे नहीं।
2: मैं कहता हूँ जहर उगलने से बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा।
0: आप क्या सिर फाड़ेंगे, गलियों में बच्चे तक जानते हैं। मेरी जान,

0: आपकी पत्नी भरे बाजार में आपको पीट दिया करती थी।
1: और तुम भी तो अपनी उस नौकरानी से छिपते फिरते हो।
0: मेरी टांग आ गई, मेरा दिल कहाँ टूट गया। डॉक्टर
1: डॉक्टर
2: घोड़े पर सीढ़ी लगाए और स्वयं को शिकारी कहलवाए। पापा पापा जरा देखिए तो इन्हें हुआ क्या है। आइवन आइवन बाबा आइवन चले गए।
3: क्या नितालिया नितालिया ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। खिड़की खोल दो, खिड़की खोल दो, तो मेरा दिल फिट नहीं रहा। बेटी तो मेरा एक काम करो।
2: हा? क्या बाबा?
3: मुझे मेरा पिस्तौल ला दो।
2: जाने दीजिए बाबा, अब आप मरे को क्या मारेंगे।
3: अरे बेटी मैं पिस्तौल अपने लिए मंगवा रहा हूँ।
2: अपने लिए?
3: हाँ हाँ, मैं आत्महत्या कर लूंगा।
2: नहीं नहीं नहीं बाबा नहीं।
3: अरे पिस्तौल नहीं तो मुझे चाकू भी ला दो, मैं अपना गला काट लूंगा।
1: ला दो ना।
3: अरे आइवन तो अभी जिंदा है। आइवन
2: जिंदा है।
3: लो लो पानी पी लो, पानी पी लो।
1: मैं कहाँ हूँ?
4: तुम जहन्नुम में हो जो तुम्हारे आने से पहले जन्नत थी। हा? अब तुम घर से उठ के बैठो और नितालिया से ब्याह कर लो।
1: हा? क्या?
4: हाँ बाबा हाँ, नितालिया ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है और वो तुम्हें बहुत चाहती है।
1: क्या सच?
4: चुप चुप। नितालिया बेटी लाओ अपना हाथ इधर लाओ।
2: बाबा
4: आइवन जी ये लो, नितालिया का हाथ मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ और अब तुम लोग मेरा पीछा छोड़ो।
1: ओ बाबा मैं आपका किस्मत से शुक्रिया अदा करूं। बाबा मैं बिल्कुल अच्छा हो गया।
4: अच्छा?
1: जी हाँ। तो वो बात क्या थी? मुझे कुछ कुछ तो याद आ रही है।
2: जी मैं बताऊं? मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
4: और मेरा भी जी का जंजाल कटा।
1: हाँ याद आ गई। ये आपको मानना पड़ेगा कि मेरा डब्बू आपके कालू से कई गुना बढ़िया है।
2: ये कई गुना घटिया है।
1: जी नहीं,
2: ये आपको मानना पड़ेगा।
1: मैं कहता हूँ बढ़िया है।
2: मैं कहती हूँ घटिया है।
1: जी नहीं, मैं कहता हूँ बढ़िया है।
2: आश्रम की खुशियां
1: तो अभी से। मैं कहता हूँ बढ़िया है।
2: बढ़िया नहीं है, घटिया है।
1: मैं कहता हूँ बढ़िया है।
4: तुम लोग
1: भी है। जी है।
4: मैं ही यहाँ से।

अभी आप सुन रहे थे इंटर्न चेखव की रूसी कहानी द प्रपोजल का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर विवाह का प्रस्ताव। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे कामिनी कौशल, विनोद शर्मा और कमलाकर दाते। ये नाटक मधुप शर्मा के निर्देशन में विविध भारती के स्टूडियो में सन 1966 में रिकॉर्ड किया गया था। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज हम लेकर के आए हैं संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दिलीप सेन साहब। पिछले भाग में हमने आपके कुछ गीतों पर, आपके संगीत पर चर्चा की थी, तो आइए आज फिर से आपकी संगीत यात्रा पर इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दिलीप साहब, बात हो रही है आपकी संगीत रचना पर। आपने इतने गीत अब तक बना दिए हैं, तो 90 के दशक में आप लोग जब लाइव म्यूजिशियंस और क्रिएटिव सिटिंग्स के जरिए गाने बनाते थे,
3: हाँ,
2: और किसी एक साज वाले से गलती हो जाती थी तो पूरा गाना दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता था, इस तरह से काम हुआ है, हाँ, इसमें क्या तकलीफें आती थी?
3: देखिए, आज जो टेक्निक है ये क्लिक पे रिकॉर्ड होता है।
2: हाँ,
3: पहले वो क्लिक ले लेते हैं, टक टक टक टक, प्रोग्रामिंग हो जाती है, तो वो ऑलरेडी बज चुका है। अब उसको सुन के लोगों को बजाना है, समझ गए?
2: जी,
3: हमारे वक्त ऐसा नहीं होता था।
2: जी,
3: हमारे वक्त क्या, जैसे अभी गाना शुरू हुआ, वो जैसे गोरी चोरी चोरी कहाँ जाए पता, तेरा टाका बिगड़ा हमको है पता, कैसे आंखें लड़ी कैसे बात बड़ी, कैसे चुभा तुझे कुछ हुआ तुझे, हमको ना बनाना रे, हमसे ना छुपाना रे, गोरी चोरी चोरी मेरी नींद गई मेरा चैन गया, कब जब होश ना था कुछ बात हुई हाय मैं, ये जैसे गया।
2: हाँ,
3: अब आंखों की बनी तनम को बहुत भाव गई, राजन से मिलके घड़ी दो घड़ी में देखो चली आ गई, कहाँ लाली गई। अब ये जो आता है,
2: हाँ,
3: यहां से क्या होता है, हल्का सा टेम्पो बढ़ जाता है जब लाइफ होता है ना, डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा, धिंता का धिंता का धिंता का धिंता का धिंता का। तो आज अगर हम लोगों ने जो लाइव म्यूजिक बजाए हुए हैं उनको अगर आप क्लिक में लोगे वो हिला हुआ लगेगा, क्लिक पे आ नहीं था। तो ये जो टेक्निक थी हमारी, तो जैसे वो गया, अगर किसी ने बढ़ाया रिदम तो बजाते बजाते एक जोश आता है ना अंदर से,
2: बिल्कुल,
3: तो जैसे आपने बजाया बजाया तो जैसे ही जोश आया तो कभी कभी कोई ओवर जोश हो जाता था, अरे कट कट कट कट कट, दोबारा लेते हैं, तो इस तरीके से किसी ना किसी की हो जाती थी। और अक्सर क्या है कि जैसे कुछ फ्रेज लोग भूल जाते थे
2: जी,
3: तो हमारे वक्त जो लाइव म्यूजिशियन होते थे उसमें हल्का सा उतार चढ़ाव रहता था, टेम्पो की बात कर रहा हूं। आज क्या, क्लिक के ऊपर है, वो हिलता नहीं है, इसीलिए आज जो सिंगर है ना वो बहुत बंधा हुआ गाता है। तो हम लोग क्या करते हैं आजकल, एक एक से दो बार एक्स्ट्रा रखते हैं उस फॉर द सिंगर, क्योंकि जैसे मैंने गाया वो गाएगा नहीं, तो उसको थोड़ी जगह चाहिए कि सांस लेने के लिए या फील डालने के लिए, तो हम एक्स्ट्रा दो बार रख लेते हैं। फिर उसका जितना उसने गाया हमको जहां तक उसका चाहिए चाहिए, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा बार हुआ वो हम कट करके वापस ज्वाइंट कर देते हैं। आज ये फैसिलिटी है, तो उसमें गाने में हम लोग ये कोशिश रखते हैं कि बार की, अमूमन हर आदमी को ये टेक्निक नहीं पता,
2: नहीं आती है। जी जी जी
3: जी
2: तो कोई एक गाना कितने दिनों में रिकॉर्ड हो जाता था? उन दिनों 90s की जब हम बात कर रहे हैं, तो एक गाने को रिकॉर्डिंग करने में आपको कितना दिन लगता था, ये
3: एक
2: या
3: दिन,
2: एक कलाकार कितना समय लेता था एक गाने की रिकॉर्डिंग में?
3: एक दिन,
2: अच्छा,
3: एक दिन, एक, मैं एक दिन में दो दो गाने किए मैंने। मैं एक फिल्म कर रहा था वो एक दिन में विथ सिंगर के, पहला गाना जब किया तो उसमें मोहम्मद अजीज जी और अलका याग्निक जी विथ कोरस ऑर्केस्ट्रा, मतलब कम से कम 100-125 म्यूजिशियन कोरस के साथ में, और सिंगर अपने रूम में, तो अलका जी और अपना ये मोहम्मद अजीज, वो 11:30 बजे के रिकॉर्डिंग करके 3:30 बजे 3:30 बजे तक उनका पैकअप हो गया। 4 बजे दूसरी शिफ्ट में आशा जी, अमित कुमार, वो भी लाइव 10:30 तक उनका भी पैकअप हो गया। तो कभी कभी हमने दो भी गाने किए हैं
2: जी।
3: और जब थोड़ा जब सक्सेस आ गई तो एक गाना 2 दिन में भी किए हैं।
2: हाँ जी,
3: तो वो ऐसा नहीं है, वो 2 दिन में तो इसलिए हुआ क्योंकि एक दिन में पहले दिन फुल ऑर्केस्ट्रा हो गया, दूसरे दिन ये हो गया, क्योंकि बाद में टेक्नो जो साउंड आया ना ये थोड़ा टाइम लेने लग गया। क्योंकि देखिए, जब आप कोई काम करते हैं तो आपको एक बात बता दें कि आपको वो उस चाल में चलना पड़ेगा साथ में। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोगों ने जितने भी गाने किए हैं अफलातून

0: के जो भी प्रोग्रामिंग होते थे, मैं उसके साथ साथ हमारा ऑर्केस्ट्रा भी होता था,
1: जी
0: लाइफ लाइफ ऑर्केस्ट्रा भी। तो हम लोग पहले ट्रैक ले लेते थे, फिर वो ट्रैक ओपन करके इनके वॉइस जो कोरस, मतलब जितने ऑर्केस्ट्रा है कोरस है, उनमें हेडफोन में उनको आता था, जो हमारा कीबोर्ड का जो प्रोग्रामिंग का है। अब जैसे आप देखिए, मेरा गाना था ओले ओले, अब अफलातून, ये 98 के करीब के गाने हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो हम लोगों ने उस वक्त से भी, मतलब मॉडर्न थे हम लोग, जो आज भी हिट है।
1: तो अभिजीत साहब की आवाज में ये गाना रिकॉर्ड हुआ था।
0: हाँ, ये पहले किसी और के था, और अभिजीत आया था एक गाने की, एक लाइन गाने के लिए, लगी लगी है ये दिल की लगी, ना समझो इसे दिल लगी। देखिए, जब सक्सेस होना होता तो ईश्वर की
1: जी
0: कृपा होती है।
1: जी
0: उसने गाया और उसकी वॉइस क्वालिटी, और नो डाउट मेहनती लड़का तो था ही वो,
1: बिल्कुल।
0: उसने जी जान तोड़ के वो गाने को गाया, ओले ओले गाने के बाद। अब वो गाना क्या हो गया कि मैं और प्रेमिला जी, मतलब मिसेस चोपड़ा,
1: पामेला
0: हाँ
1: जी।
0: प्रेमिला जी, तो अक्सर हम लोग जब भी बातचीत होए, वो बोले नहीं वो सिंगर ठीक है, मैं बोला नहीं जी ये ठीक है, अभिजीत ठीक है, तो बोले नहीं दिलीप जी ये कुछ लाउड नहीं लग रहा। आखिर मैंने बोला सैफ की जो वॉइस का टोन है, वो इसका टोन ज़्यादा बेटर है।
1: मिलता है।
0: फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं की। तो एक बार हम लोग ऐसे ही बातचीत कर रहे, इतने में यश जी आ गए। यश जी आते, हम दोनों चुप हो गए। तो हम दोनों को देखते, यश जी समझ गए कि कुछ बात कर रहे थे, चुप हो गए। हाँ भाई क्या बात हो रही थी आपस में? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बात है। नहीं तो यश जी ने बोला, बोलो नहीं नहीं बोलो तानसेन क्या बात है? मैं बोला कुछ नहीं, बहन जी बोल रही है कि वो फलाना सिंगर है। और मैं बोला आप क्या चाह रहे हो? मैं बोला अभिजीत ज़्यादा ठीक लगा। तो यश जी ने मेरी तरफ और प्रेम जी की तरफ देख के बोला, देखो प्रेम, हम डायरेक्शन डिपार्टमेंट के हैं, हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हैं, ये हमारा काम है, म्यूज़िक का हमारा नहीं है, म्यूज़िक का काम है म्यूज़िक डायरेक्टर का, गाना इन्होंने बनाया है। तो ही वेरी इज नो वेरी वेल के इसमें कौन सा सिंगर है। अगर तानसेन बोल रहे हैं कि अभिजीत सही है, तो अभिजीत सही है, वो हमको इसमें, आपको बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए।
1: बहुत
0: तानसेन
1: बढ़िया,
0: जी अभिजीत का ही रखेंगे, इस तरीके से वो अभिजीत का रहेगा।
1: क्या बात। और बहुत शानदार गाना गाया उस
0: नहीं नहीं बहुत अच्छा
1: आवाज
0: गा,
1: में, जो सैफ अली साहब की आवाज
0: सूट
1: थी
0: हुई, और
1: बिल्कुल स्वीट हुई।
0: नहीं, और अभिजीत ने मेहनत भी

0: क्या होता है, ऐसे ही कोई नहीं स्टार बन जाता,
1: जी
0: कुछ तो काबिलियत होती है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से लता दीदी का उन्होंने आएगा आने वाले से कई पहले गाने गाए थे, पर जैसे उनका महल का गाना आया आएगा, तो दीदी को लाइमलाइट में आना था आई।
1: जी।
0: तो आज इसी तरीके से सिंगर की जो जिंदगी है, कोई ना कोई गाना बना देता है
1: बस
0: जी।
1: उस पल का इंतजार होता है,
0: हाँ
1: जैसे आपकी जिंदगी बनी सुरमा भोपाली से, आईना से,
0: हाँ मगर
1: मतलब वो एक।
0: पहचान बनी ओले ओले से।
1: चलिए एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
0: एक गाना मुझे आर्य बर्मन जी का, मतलब एक गाना था चिंगारी कोई भर के,
1: आहा, अमर प्रेम का।
0: अमर प्रेम का एक गाना है। ये गाना मुझे दिल को इसलिए छूता है कि उसकी जो लय है, चिंगारी कोई, वो इतना लय, दबी हुई लय में गाना है। मगर जो बख्शी साहब ने लिखा, जो किशोर दा ने गाया और जो कंपोज हुआ, मैं समझ रहा हूं कि बस ये आइडियल चीजें हैं, ये हमारी स्कूल है। इसी गाने के हिसाब से मेरा टेम्पो मैंने रखा था, मेरा हम तुमसे ना कुछ कह पाए, हमने भी यहीं से एक टेम्पो लिया था। तो मैं चाहूंगा कि ये चिंगारी गाना आप सुनाएं।
1: जी बिल्कुल, सुनाते हैं, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: तो दिलीप जी, आपने जैसा कि कहा कि आर डी बर्मन साहब का ये गीत या किशोरदा की आवाज या आनंद बख्शी के बोल, क्या इन सभी लोगों से मिलना आपका हुआ कभी?
1: नहीं,
0: वो
1: किशोरदा के साथ तो ऐसा है, मेरा मुलाकात, किशोरदा उस वक्त जिंदा थे, और
0: और आर डी बर्मन साहब से या
1: आर डी जी के साथ तो इसने काफी काम किया। किशोरदा का तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक फिल्म थी हमारी, अमित जी गा रहे थे, अमित कुमार।
0: अमित कुमार?
1: तो अमित कुमार क्या किया, हमको नीचे बिठा के काफी देर तक आए नहीं। तो दादा उस वक्त दो बार घूमे, दादा घूमे तो मैं खड़ा होकर उनके पैर छूने के, बोला नहीं, नहीं, नहीं। सेन साहब के लड़के बहुत मजा, वो जो उनका स्टाइल है, अमित नहीं आया, अमित नहीं आया, इतने में अमित नहीं जाएगा। तो उनको बोला, देखो अमित, ये नॉर्मल संगीतकार नहीं है, ये बहुत बड़ा खानदान है, इनको वेट नहीं कराने का, टाइम से रखो। टाइम दिया तो टाइम, अभी इतनी देर से बैठे हैं, नहीं है, आइंदा ध्यान रखना। वो मेरी मिट्टी, और हमारा एक गाना गाने वाले थे सुरमा भोपाली, मगर वो किसी कारण उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं गा पाए, तो फिर वो गाना मोहम्मद अजीज ने गाया। तो ये जो लीजेंड लोग हुए ऐसे ही नहीं हुए। और गाना जब कोई चलता है, मैंने कहा ना कि सिंगर जो होता है वही उसको लेके चलता है, तो जितना अच्छा कंपोजिशन, जितनी अच्छी लिखावट थी, उतनी अच्छी फील भी इस गाने में, जो मुझे तो अच्छी लगी, शायद ऑडियंस को भी लगती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ऐसे गाने हैं जिन्हें कभी भुलाया ही नहीं
1: और
0: जा
1: उसके
0: सकता।
1: बाद में मैं एक किस्सा सुनाऊं आपको, बख्शी साहब के साथ जब मैं काम करने लगा, पहली फिल्म उन्होंने की मेरे साथ तू चोर में छिपाई,
0: जी
1: तो जिसका वो गाना था, हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर शोर शोर, वो पिक्चर मेरी चली। फिर उसके बाद में एक पिक्चर थी हमारी भीष्मा, तो उसमें गाना उनका, बाकी गाने तो चले मगर एक गाना उनका बहुत चला, वो मेरे सीने में दिल मेरा डोले के पिंजरे में पोपट बोले। क्योंकि मैं देखिए जिन जिन लोगों के साथ मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ, कैफी आजमी साहब के साथ मैंने पिक्चर की थी जाना ना दिल से दूर,
0: जी
1: और नीरज साहब के साथ मैं एक पिक्चर की जाना ना दिल से दूर, विजय आनंद जी की, जो देवानंद जी की लास्ट पिक्चर थी एज ए हीरो, वो
0: हाँ
1: किसी कारण रिलीज नहीं हो पाई। विजय आनंद जी की भी लास्ट पिक्चर थी वो, और जिसमें नीरज साहब के गाने थे, कैफी आजमी साहब के गाने थे, एक गाना था उसमें, तू चला जो अपनी तलाश में तो कहाँ कहाँ से गुजर गया, तू चला जो अपनी तलाश में तो कहाँ कहाँ से गुजर गया,
0: बहुत सुंदर
1: था
0: है।
1: कदम कदम पर इम्तिहान, हर इम्तिहान से गुजर गया। ये कैफी साहब का लिखा हुआ था, और नीरज साहब का लिखा हुआ था, जा

0: मेरे नूर।
1: क्या बात है।
0: इसका अंतरा सुनिए आप। आंखें बरसे बदरा बरसे, अग्नि ना कोई
1: वाह
0: बुझाए,
1: वाह सुंदर।
0: हाय हम तो सबको गले लगाए, हमें

तो ये बहुत भाग्यशाली रहा। फिर मैंने इनके साथ जावेद अख्तर साहब के साथ फिल्म की, अर्जुन पंडित, जिसका एक गाना हमारा काफी पॉपुलर हुआ, हर कदम पर कोई कातिल है कहाँ जाए कोई। फिर असद भोपाली साहब के तो साथ की मैंने सुरमा भोपाली, माया गोविंद जी के साथ एक मैंने काफी काम किए, जिनमें एक हमारी पहली सीरियल

0: थी, काफी गाने उनके हिट हुए, मगर उनका एक गाना मेरे साथ काफी बड़ा हिट रहा। वो गाना था फिल्म मेहरबान का, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते
1: बहुत सुंदर गाना।
0: तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। ये सोनू निगम जी का एज ए सिंगर फिल्म में खुद का गाया हुआ गाना पहला गाना था। इससे
1: अच्छा।
0: पहले उन्होंने अतावला के गाए थे, अच्छा दिसेला दिलिया तूने, रफी साहब के वर्जन गाए थे। मतलब एक होता है ना कि जिस गाने की मोहर लगे कि पहला गाना एज ए सिंगर,
1: वो ये
0: वो
1: था।
0: ये था।
1: हाँ, तो क्या अनुभव रहा सोनू निगम के साथ काम करने का? आज तो वो इतने बड़े कलाकार के रूप में है, वो पहला गीत गाते समय क्या उनका वो रहा
0: नहीं, वो
1: होगा?
0: गीत दरअसल उसका था भी नहीं। जब ये, क्योंकि सोनू जी वहाँ काम करते थे और बच्चे ही थे, तो गुलशन जी को वो बोलते थे कि यार एक बार मुझे दिलीप सैन समी सैन के यहाँ साथ में गाना है। तो गुलशन जी आए मेरे पास, बोला यार दिलीप जी एक काम करो, ये गाना जो बन रहा है ये सोनू से गवा लो। मैं कहा सर मिथुन चक्रवर्ती है, आयशा जुल्का, मिथुन जी की चेहरे पे ये आवाज़ थोड़ी पतली लगेगी, मैं जाता हूँ शब्बीर या मोहम्मद अजीज़ कोई हो। नहीं, आप सोनू से गवाइए, बेचना तो मुझे ही है। फिर सोनू ने गाया, सोनू ने इतना अच्छा गाया। और सोनू के अंदर एक बात बहुत अच्छी है, वर्सेटाइल सिंगर तो है ही वो, मगर उसके अंदर एक कोई कुदरत की ऐसा जादू है कि उसको अगर बोल दो ना कि इसके अंदर ये भाव चाहिए तो भाव वो पैदा कर देता था। तो सोनू जी में बात तो है, तभी तो देखो आज सुपरस्टार है वो।
1: जी। तो एक गाना सुन लेते हैं, और कौन सा गाना?
0: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है इसी पिक्चर में, धीरे से

0: इतना गहरा अनुभव आपका रहा है, इतने सारे कलाकारों के साथ, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, सभी के साथ आपने काम किया है और बहुत सफल गाने आपने दिए हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपकी चॉइस या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की चॉइस अलग रही हो और आपको एडजस्ट करना पड़ा हो और कोई फिर एक बहुत ही शानदार गीत निकल कर आया हो?
1: नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत नसीब वाला रहा हूँ इस मामले में, क्योंकि मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरे काम पे के साथ साथ मेरी बातों पे बहुत भरोसा करते थे, और उनको ये लगता था कि ये आदमी कोई गलत डिसीजन नहीं लेगा।
0: जी
1: फिल्म लाइन के अंदर जो बाकी डिपार्टमेंट हैं उनमें 19-20 चल जाता है
0: जी जी
1: कि आप शाहरुख खान लग रहे हो, आप फलाने लग रहे हो, आप बहुत अच्छा गीत लिख रहे हो, ये कर रहे हो, बट सिंगर आप किसी को नहीं बोल सकते। सिंगर जब तक आप सुर में नहीं होंगे तब तक आप यहाँ दिल में नहीं लगोगे।
0: सही कह
1: दुनिया में अगर कोई सुकून की चीज़ है जो बगैर पैसे के मिलती है वो है संगीत, और वो है गाना। अगर आपके मिजाज का गाना अगर आपको मिल जाता है, आप गाते हैं तो हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो सुनने को भी अगर आपको मिल जाता है तो भी आपको सुकून मिलता है, तो
0: जी।
1: इसमें आप झूठ नहीं बोल सकते। तो ऐसा, क्योंकि जो मेरा डिपार्टमेंट है राइटर के लिए जो मुझे देते गए, मैं आज भी किसी को नहीं बोलता हूँ कि फलाना राइटर है या फलाना। सिंगर के लिए जब मेरे पास कोई बात आती है तो मैं ज़रूर कह देता हूँ कि भाई मुझे सिंगर वो दो जो मुझे समझ सके और मैं उसे समझ सकूँ, क्योंकि मेरी कोई जाति दोस्ती या दुश्मनी तो होती नहीं सिंगरों से। मैं सुन लेता हूँ, हाँ इस बच्चे में ये टैलेंट है, अच्छा कोई 19-20 होता भी है सिंगर तो हम उसको सपोर्ट करके बाकायदा वहाँ तक पहुँचाते, क्योंकि
0: तो दिलीप सेन साहब, जब आज के समय में तो ऐसा हम सुन ही रहे हैं कि ऑटो ट्यून जो टेक्निक आ गई है वहाँ थोड़ा सा आवाज 19-20 को ठीक कर दिया जाता है, लेकिन जिस समय आप संगीतकार बने थे, जब कड़ी मेहनत का जमाना था, रियाज का जमाना था, क्या कभी कोई कलाकार की आवाज 19-20 हो जाती थी? क्योंकि आपने तो बहुत सारे
1: नहीं,
0: कलाकारों के साथ काम किया है।
1: मैं बहुत नसीब वाला रहा हूँ कि देखिए, कुमार सानू, उदित नारायण, अभिजीत, सोनू निगम, सुनिधि, अपना जसविंदर नेरुला, ऋचा शर्मा, अपना
0: अनुराधा
1: अनुराधा
0: पौडवाल जी
1: जी,
0: हैं, अलका याग्निक,
1: अलका जी, साधना सरगम जी, कविता जी, ये पंकज उदास जी, और मना अपना पंकज के अलावा मेरे साथ विनोद राठौड़ जी, मुकेश जी, नितिन मुकेश है, मोहम्मद अजीज है, शब्बीर जी, अनवर, इवन अपना शंकर महादेवन, अपना ये क्या बोलते हैं सुखविंदर, बाली ब्रह्म भट्ट,
0: अरे क्या
1: जॉली
0: बात।
1: मुखर्जी, ये जितने सिंगर मुझे जिस वक्त मिले, पैमिला जैन, अपना सुषमा श्रेष्ठा जो,
0: पूर्णिमा के नाम से
1: पूर्णिमा
0: हैं।
1: जी, और कोई सिंगर छूट नहीं जाए भाई, किसी को बुरा ना लग जाए, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट श्वेता सेठी, ये जितने अलीशा चिनोई, मुझे जितने भी सिंगर मिले या जिनके साथ काम करने का मौका मिला, वो चित्रा जी और हरिहरन जी, ये इन्होंने मुझे हद से ज़्यादा प्यार दिया, और मेरी गरिमा को या मेरी पोस्ट को एक

0: रिस्पेक्ट दी जो मैं चाहता था, वो उस वक्त वैसा ही करते थे, चाहे वो कुमार सानू जी रहे हों, सोनू जी रहे हों। क्योंकि नो डाउट, जब ये कोई भी गाना बनता है तो वो नया होता है, शब्द भी नए होते हैं, धुन भी नई होती है। अब सिंगर क्या होता है कि सिंगर जब आता है तो ये लोगों की एक बड़प्पन ये रहा है कि जब ये मेरे पास आते हैं तो ये सिर्फ मेरे लिए ही आते हैं, सुरेश वाडेकर जी हुए, फिर वो उस दिन दूसरा कोई काम नहीं लेते हैं।
1: जी
0: वो इसलिए नहीं लेते कि भाई दिलीप सेन के यहाँ कितना टाइम लग जाए। और ऐसा नहीं कि मैं सिंगर को कोई तंग करता हूँ,
1: नहीं, वो
0: क्योंकि
1: बात नहीं है, वो
0: वो उनको
1: रिस्पेक्ट
0: पता है कि एक ड्यू रिस्पेक्ट
1: और
0: कि
1: कला
0: यार
1: के
0: वहां
1: प्रति
0: जाएंगे तो वो भागने का काम नहीं
1: और
0: करना है।
1: कला के प्रति
0: हाँ,
1: समर्पण।
0: समर्पण के नहीं यार, जब तक दिलीप सेन, समीर सेन मुतमिन नहीं होंगे, जब तक वो परफेक्ट नहीं बोलेंगे, हम उनके यहाँ से दूसरा गाना गाने जाएंगे नहीं।
1: तो एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आपकी और संगीत यात्रा पर चर्चा करते हैं।
0: जी बिल्कुल, सुनिए।
1: कौन सा गाना?
0: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है जो दीदी ने मेरे दिल से गाया था, होठों पे बस तेरा नाम है,
1: तुझे चाहना मेरा काम
0: काम
1: है,
0: है। जी
1: फिल्म ये दिल लगी का गीत, बहुत सुंदर गीत है
0: जी
1: दिलीप
0: जी
1: सेन
0: जी
1: साहब
0: जी
1: ये,
0: जी
1: तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: आपका परिवार संगीत सम्राट तानसेन की परंपरा से जुड़ा हुआ रहा है
1: नहीं, हम
0: और
1: केसर सेन की औलाद हैं, मतलब केसर सेन जी उनके शिष्यों में गिने जाते हैं।
0: जी तानसेन के शिष्यों
1: हाँ,
0: में गिने
1: शिष्यों में।
0: जाते थे तो, और आपके पिता जमाल सेन साहब भी जाने माने संगीतकार रहे, और आपके घराने की जो विरासत के कारण आपके गानों में एक जो इंडियन क्लासिकल बेस और पक्के सुरों की जो गहरी समझ दिखाई देती है आपके गीतों में, आपकी संगीत रचनाओं में, लेकिन साथ ही हमने देखा कि आपके कुछ गानों में देसी तरीका भी अपनाया गया है, जहां पर टेबल पर धुन थपथपाते हुए भी गीत कुछ आए
1: हाँ,
0: हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कैसे है?
1: नहीं देखिए, एक एक चीज़ याद रखिएगा, फोक जो है, अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि फोक कहते हैं किसको है।
0: जी
1: फोक कहते हैं आमद को, एक चीज़ आमद होती है। तो इसी तरीके से हमारी जो माताएं बहनें उस ज़माने में, आज से 100 200 साल पहले, दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरणत भवन सु आयो विनायक, करो ये नसी तीन धरी, मारा दिलीप सेन जीव धारिया जी। वो इस
0: बिल्कुल
1: तरीके से करके ज्वाइंट करती दे रहती थी। तो वहां से ये फोक ट्यूने
0: शुरू
1: निकली।
0: हुआ।
1: जैसे रेशमा जी के लिए कहते हैं कि रेशमा जी ने फोक से ही शुरुआत की, और वो भी राजस्थान से हैं,
0: जी
1: मेहंदी हसन साहब भी राजस्थान से हैं।
0: बिल्कुल
1: तो जितने भी लोग राजस्थान के कल्चर में पैदा, क्योंकि राजस्थान की जो मिट्टी है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, इनका सबका एक अपना कल्चर है। और फोक जो है, फोक हमारी आत्मा है, क्योंकि हर जगह राग तो चलती नहीं है, तो फोक ही होता है। मगर फोक कहीं ना कहीं, फोक में क्या होता है कि उतार चढ़ाव नहीं होता, वो एक ही ट्यून होती है, वो एक ही ता जैसे सा है, तो उसी सा में चला जाएगा वो। फिर उसको हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं, ये थोड़ा ऊपर नीचे करके कर लो, तो हम लोग करते हैं। तो हम लोग ने भी जैसे कि
0: कई गीतों में आपने ही प्रयोग किया।
1: नहीं, पर मैंने एक, मैं बहुत अविनाश करके हैं, गुजरात के बहुत बड़े संगीतकार हुए हैं,
0: जी
1: जिनका काफ़ी हिट गाने हिट हुए। उनका एक गाना था, किया ते गामना गोरी राज अचको मचको कारेली। हमने थोड़ा सा उनसे एडोप्ट किया उस गाने को, हम मेरी चोली के टूटे सब धागे अचको मचको का करुणा। तो ऐसे हम लोग थोड़ा बहुत फोक का सहारा ले लेते हैं, बट कोशिश ये करते हैं कि अपनी ज्यादातर की कंपोजिशन खुद की हो।
0: कहीं से उठाकर नहीं ली
1: नहीं
0: गई हो,
1: नहीं
0: ताकि वही
1: फोक तो
0: जो
1: आप किसी का भी ले सकते हो। अब नौशाद साहब का अमूमन ज़्यादातर के अगर गाना सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फोक ट्यूने के आसपास के नज़र आएंगे, बाकी वो अपनी कंपोजिशन करते हैं। वैसे नहीं, नय्यर साहब हुए, उन्होंने पंजाब के फोकों को काफ़ी इस्तेमाल किया, तो वो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारे कल्चर को भी हम उठा के दे रहे हैं। अरे हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं,
0: जी
1: जहाँ हमें हर प्रांत की भाषा, हर प्रांत का पहनावा, हर प्रांत का संगीत, हर प्रांत का खाना पीना, इतनी वैरायटियां दुनिया में कहीं नहीं है। आप
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो इसलिए हमें तो गर्व है इस बात का कि हम हिंदुस्तानी हैं और भारतवर्ष में पैदा हुए हैं।
0: बिल्कुल
1: तो आप काम ऐसा करो कि आने वाली पीढ़ी के अंदर कुछ अच्छी बातें जाए। आप काम ऐसा करो कि लोग बाग आपको जब भी बाजू में से निकले तो लोगों में बोले, नहीं आ रही है ये दिलीप सेन जा रहा है, या नहीं, अरे ये दिलीपिया जा रहा है, ऐसा नहीं, ये दिलीप सेन जी जा रहे हैं या दिलीप जी जा रहे हैं। आपके नाम के आगे पीछे जी लगना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: जी
0: सही
1: तब
0: कहा।
1: लगेगा जब जी वाला काम, दूसरों का दिल जीतोगे।
0: जी चलिए एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं, कौन सा गाना है?
1: अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते
0: बहुत सुंदर गाना।
1: तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। मैं चाहूंगा कि ये गाना आप सुनाएं।
0: जी बिल्कुल सुनाते हैं, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: आपकी 5वीं पीढ़ी फिल्मी दुनिया में कदम रख रही है और आपको दादा साहब फाल्के जनरेशन पुरस्कार 2012 में
1: जी
0: मिला,
1: हाँ,
0: इसके बारे में हम जानना चाहेंगे।
1: देखिए दादा साहब फाल्के के लिए मैं क्या बोलूँगा, पूरी दुनिया जानती है कि पितामह रहे हैं,
0: जी
1: जिनकी वजह से आज हम सब रोटी खा रहे हैं। उनके नाम का अगर आपको कोई छोटा सा पर्चा भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है। तो ये 4 जनरेशन को मिला था, मतलब जमाल सेन से सोहेल सेन तक,
0: अच्छा
1: 4 पीढ़ी को के एक सम्मान मिला कि भाई इतना लंबा मतलब
0: सफर
1: सफर जो कपूर खानदान का रहा है या सेन परिवार का
0: जी
1: संगीत
0: जी
1: में रहा है।
0: जी जी
1: और 5वीं पीढ़ी में अभी मेरा पड़पोता समर, जो सोहेल का बेटा है।
0: अरे वाह, मतलब सोहेल

0: तो आ ही गए हैं, सोहेल सेन के बेटे भी आ
1: बेटे
0: गए
1: भी आने वाले हैं अभी
0: हैं
1: जल्द जी।
0: जी, तो बहुत ही शुभकामनाएं हैं आपको और
1: धन्यवाद जी,
0: आपके
1: धन्यवाद।
0: परिवार को। और नए गायकों, नए संगीतकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए मैं इतना ही कहूंगा, जितने जो लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर मेरा उन लोगों से एक ही कहना है कि देखिए इंस्पायर होना कोई बुरी बात नहीं है। आप किसी को देख के और उसकी चीज की तारीफ करके आप उस जैसा मत बनो, उसके साथ कोई मिलती जुलती सी चीज अगर आप बनाते हो तो उसमें क्यों आपकी अलग एक तारीफ बनती है। और हमें अपना जो हिंदुस्तानी संगीत है उसको खोना नहीं है, जो
0: जी
1: आज लुप्त होते जा रहा है। मगर मुझे उम्मीद है कि शायद ये नई जनरेशन जो आ रही है, हमें थोड़ा संगीत सीखना चाहिए, संगीत की मालूमात रखनी चाहिए, शायरी की मालूमात रखनी चाहिए,
0: जी
1: कविताओं की मालूमात रखनी
0: भाषा
1: चाहिए,
0: की
1: भाषाएं में जिनमें देखिए कविताएं आनी चाहिए, शायरी उर्दू। जरूरी नहीं है कि आप उर्दू पढ़ें, मगर कम से कम जैर जबर तो हो, आप तलफ्फुज तो सही करा सकें। तो ये जो चीज़ें हैं सिंगर के लिए भी ज़रूरी है, म्यूजिक डायरेक्टर के लिए भी ज़रूरी है। आप ज़रूरी नहीं है कि 100 राग हैं या 50 राग हैं या बेसिक 2 4 5, क्योंकि आजकल भैरवी, यमन कल्याण, या भोपाली या पहाड़ी या समझो शिवरंजनी, इस टाइप के जो 4 5 रागे हैं वो थोड़ा बहुत उसका अनुभव हो, कॉर्ड से गाना बनाइए, मगर कम से कम आप अपनी मेलोडी को मत जाने दीजिए। जो आपकी धरोहर है
0: उसे रखिए।
1: उसे आप कायम रखिए। क्यों? कि आज हमारा हिंदुस्तान जो हमारी सभ्यता से ही पहचाना जाता है,
0: जी,
1: हमारी संस्कृति से हमारा हिंदुस्तान पहचाना जाता है, हमारी पूजा पाठ से, हमारी इबादत से हिंदुस्तान पहचाना जाता है, क्योंकि हम अनेकता में एकता में पहचाने जाते हैं कि हमारे सर्वधर्म सम्मान है। हम हर
0: जी
1: धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, हर
0: करते
1: संगीत की हम रिस्पेक्ट करते हैं, और हमारे यहाँ जितने प्रांत है उतना ही हमारा अलग अनूठा संगीत है,
0: जी
1: प्यारा संगीत है। आप किसी भी प्रांत का संगीत ले लीजिए, आपका दिल खुश होगा, पूरा प्यारा सा गुलदस्ता है हमारा संगीत का।
0: बिल्कुल सही कहा। बस जाते जाते एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं।
1: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है, मैं चाहूंगा कि ये गाना आप सुनाएं।
0: जी बिल्कुल, सुनाते हैं, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: दिलीप सेन साहब, जाते जाते कि आप एक शास्त्रीय बंदिश हमें अगर सुना दें तो हमारे श्रोता भी खुश हो
1: मैं
0: जाएंगे।
1: आपको एक वो चीज सुनाने जा रहा हूं कि जो आज तक शायद आप लोगों ने नहीं सुनी हो।
0: जी
1: शिव तांडव तो आपने सुना ही है, जैसे कि जटा कटा जटा टज प्रभावता वितस्थले वीरो विलंब विलंब भुजंग तुंग मार जटा टविगल ज्वल प्रभाव अपा वितस्थले, ये शिव तांडव हो गया।
0: जी
1: कि हनुमान तांडव जो है कि हनुमंत के लपेट दिल अंगूर के झपेट दिल दुष्ट को दपेट जरा पेट चकला न बजे नक चरा तो न तो होता कटा कट गिरी से न पटा पट पटी पटी पाट कभी को के लकार की ले जो है जे लकार पड़ी भीड़ बिल लकार कटे रखे जनिदान तहे तेज को कुमार करी को बेसुमार वीर लखन कुमार झुकी जारी की रवान प्यारे सीताराम को उजारो रघुवंश को अनियारो जन पेजे महागुरु रण को रघुकुल मंडल प्रचंड बैठी दंड मुंड दन न उमन न सुखन न है कल को भूपत सर तो को ना वेलो अल बेलो न रेलो रूप रेलो चल राग सनी कर को आन सकत की रेते उमंडी खले खानी चंडी पति सो घमंडी कुल खानी दिने कर को। ये इस तरीके से पूरा हनुमान तांडव है
0: क्या
1: जो
0: बात
1: मैंने
0: है।
1: रिकॉर्ड किया हुआ है, जो मेरी आवाज में ही रिकॉर्ड है। और इसी से ये जो रैप बना है, जो बोलते हैं ना लोग प्रदेश का है, कहीं का नहीं है, ये हमारे छंद है। आज से 10,000 20,000 साल पहले के ये छंद है जो हम डांस में यूज करते हैं। इसे तूने मुझे देखा नहीं, मैंने तुझे देखा नहीं, चाय भी पिलाऊंगा खाना भी खिलाऊंगा, चल मेरे साथ तेरे बाप को मिलाऊंगा, तो इससे आप कुछ भी
0: अच्छा
1: रैप वगैरह बना
0: जी,
1: सकते हैं।
0: अरे
1: तो ये रहा और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठ के।
0: अरे
1: इसलिए आपके पूरे परिवार को, आकाशवाणी को, विविध भारती को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। नमस्कार।
0: बहुत खूब, और आपने अपना अमूल्य वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद।
2: तो ये था संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हाय हाय,
0: वो कॉमिक क्रिएटर है।
3: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
3: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
3: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

छाया गीत कार्यक्रम सुनने वालों को पूनम त्रिपाठी का प्यार भरा नमस्कार। चल पड़े साथ ऐसे हम बनके जन्म जन्म के साथी, चल पड़े साथ ऐसे हम बनके जन्म जन्म के साथी। तुम कहते रहो मैं सुनती रहूं, और ये बरखा की रात यूं ही बहती रहे।

मस्ती से बहती पवन झूम झूम के डोले, जब बरखा की हर बूंद तन में हलचल सी कर जाए, काली घटाएं बादल बन बरसे, जब बावरा ये मन झूम झूम के गाए।

0: सावन बहका है, बूंदों पर है खुमार, मनवा भी बहका है। बागों में मेले हैं, झूलों के मौसम में साथी अलबेले हैं। शायद सावन भी कुछ कहता है।
1: कुछ

ओढ़ चुनरिया जब थानी, प्रकृति करे श्रृंगार, मोती बरसाता गगन, सोना उगलती धरा। नए रंग के ये ऋतुएं, मनमोहक आलम सी है छटा। चारों ओर छाई मदहोशी, सावन

बहती हवा ने तेरी खुशबू बिखेर दी, रिमझिम फुहारों ने जब तेरे जुल्फों का साथ छोड़ा, भीगी रात में तेरा करीब रहना, ऐसा लगता है जैसे मेरी सांसों में तेरी

सावन की बूंदों में झलकती है उनकी तस्वीर, सावन की बूंदों में झलकती है उनकी तस्वीर, आज फिर भीग जाने को हम हैं बेकरार, तुझे पाने की चाहत में।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का युवा अब दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। कर्नाटक के मैसूरु में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार सदैव ऊंचे रहे और उन्होंने शास्त्रों का आत्मसात किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैसूरु भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र है।
1: मैसूरु भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र रहा है। यहाँ के मंदिर, यहाँ की परंपराएं और उत्सव, मैसूरु का दशहरा, यहाँ के भव्य महल, इसका संगीत और साहित्य, भारत की विरासत इस शहर के कण कण में रची बसी है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना तथा औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आंध्र और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती है।
1: आज यहां करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। माई भारत, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज भलसवा कचरा निस्तारण स्थल का निरीक्षण किया और दिल्ली नगर निगम के अपशिष्ट निपटान कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी गई कि 31 जुलाई तक कचरा निस्तारण स्थल पर लगभग 99 लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट का निपटान किया जा चुका है और शेष अपशिष्ट को इस वर्ष 15 अक्टूबर तक निपटाने की उम्मीद है। श्री लाल ने नगर निगम को निर्देश दिया कि लैंडफिल साइट पर आने वाले नए अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए हाल ही में आवंटित

0: कार्य में तेजी लाई जाए। केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। सिक्किम में नाथूला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अब तक भारत ने 3 और स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। मुक्केबाजी में प्रीति पवार ने 54 किलो और जैस्मिन ने 57 किलो में स्वर्ण पदक जीते। 55 किलो में जादूमणि सिंह ने रजत पदक जीता। इसके अलावा सोनम राणा ने पैरा एथलेटिक्स के शॉट पुट F57 वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। शुभम जोयाल को रजत पदक मिला। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत और सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पदक तालिका में भारत 8 स्वर्ण, 15 रजत और 7 कांस्य समेत कुल 30 पदकों के साथ 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। जारी है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
2: Yo ho, I experienced it too. I experienced it.

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको बता दें झरोखा के अंतर्गत आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम संध्या रंजन 6:35 पर। संगीत सरिता कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे 6:45 पर। शाम 7 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम विशेष जयमाला, संगीतकार जयदेव पर आधारित। कार्यक्रम जिज्ञासा आप सुन सकेंगे शाम 7:45 पर। रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हवा महल। चित्रलोक कार्यक्रम सुन सकेंगे रात 8:15 पर। आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 9 बजे। रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। कलाकार हैं अभिनेता भगवान दादा, आलेख और स्वर जयंत पात्रिकर का, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। रात 10 बजे सुन सकेंगे कार्यक्रम छाया गीत। रात 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ढलती जाए रात। रात 11 बजे आप सुनेंगे चित्रपट संगीत मैटिनी शो। आइए अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। कल सुबह 5:52 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदन बार। छह बजकर 35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का 268वां भाग। 6:45 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। 7 बजे ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7 बजे। सुबह 7:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। कार्यक्रम त्रिवेणी आपको सुनवाएंगे सुबह 8:15 पर। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। इसमें आप सुनेंगे संगीतकार जयदेव को, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। सुबह 10 बजे आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम पिटारा। इसमें आप सुनेंगे फिल्म संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की।

कल सुबह 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आपको सुनाएंगे दोपहर 12:05 पर। दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम त्रिवेणी आपको सुनवाएंगे दोपहर 2 बजे। सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 2:30 पर। दोपहर 3 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम मनचाहे गीत। नाट्य तरंग आप सुनेंगे दोपहर 3:30 पर। शाम 4 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम पिटारा, उजाले उनकी यादों के। फिल्म निर्देशक, लेखिका, नाटककार पद्मभूषण साई परंजबे से यूनुस खान की बातचीत का तीसरा भाग आप सुनेंगे। संपादन सहयोग मनीषा सिंह, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। शाम 5 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम छाया गीत। तराने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 5:30 से।

संगीत सरिता का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे शाम 6:45 पर। कल शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम विशेष जयमाला, सैनिकों की शौर्य गाथा। महावीर चक्र कृष्ण नायक सोनवणे, संपादन सहयोग मनीषा सिंह, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। 7 और आवाज ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:45 पर। गिटार पर होंगे सुनील गांगुली। रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हवा महल, इसमें आप सुनेंगे नाटक अदाकार, लेखन लक्ष्मीकांत शर्मा का, निर्देशन FC माथुर। चित्रलोक कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे रात 8:15 पर। कार्यक्रम आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9 बजे। रात 9:30 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आज के फनकार, इसमें आप सुनेंगे संगीतकार जयदेव को, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। रात 10 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम छाया गीत, आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10:30 पर। कार्यक्रम विविधा आपको सुनवाएंगे रात 11 बजे। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

0: संगीत सरिता के श्रोताओं नमस्कार। आज से हम एक श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं जिसका शीर्षक है वर्षा चौमासा। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल। शुभा जी नमस्कार।
1: नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए।
0: शुभा जी आपका तो हम सभी, मैं व्यक्तिगत रूप से, विविध भारती परिवार की ओर से और विविध भारती के अनगिनत श्रोताओं की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये जो श्रृंखला हम आरंभ कर रहे हैं वर्षा चौमासा, तो इसकी भूमिका में तो मैं अगर ज्यादा बोलूं तो अच्छा नहीं रहेगा, आप ही कुछ समझाएं बताएं कि आपके मन में क्या क्या सारी बातें हैं, हम कड़ी दर कड़ी बातचीत करते जाएंगे।
1: पहले तो ये बात आपको याद दिला दूं कि उत्तर भारतीय संगीत का और उत्तर भारतीय संगीत के जो विभिन्न प्रकार हैं, चाहे वो शास्त्रीय हों या उपशास्त्रीय हों या लोक संगीत हो, सभी का ऋतु से सघन संबंध रहा है। ये सत्य है एक, जो कि सर्वविदित है, सर्वमान्य है, तो इसे बार बार दोहराने की कोई आवश्यकता भी नहीं। और जो वर्षा का एक आप कह सकते हैं विशेष स्नेह रहा है संगीत के साथ, उसके बारे में भी सबको पता ही है। बल्कि मजे की बात यह है कि बारिश ना हो सामान्य जीवन में या कम हो तो अकाल का डर पड़ जाता है,
0: आंखों से शुरू हो जाती
1: नहीं,
0: है
1: नहीं अकाल का डर हो जाता है, यदि ज्यादा हो जाए तो बाढ़ का कहर ढा सकता है। लेकिन जो रचनात्मक लोग हैं, जो कलाकार हैं, जो कि कलाकृति करते हैं, उनके लिए बारिश हो ना हो, कम हो, बूंदाबांदी हो, मूसलाधार हो, वो उसके बारे में लिखते हैं, उसे संगीत में ढालते हैं और अलग अलग प्रकार का साहित्य, अलग अलग प्रकार की रचनाएं हमें मिलती हैं। तो इससे लगता है कि वर्षा और ये जो चार मास हैं जिसमें कि बारिश हमको मिलनी चाहिए यदि कृषियों के लिए लाभदायक हम मानते हैं इसे, तो इस दौरान शायद इतनी प्रेरणा मिली है कलाकारों को कि आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा खजाना है हमारे पास जिसके जिसमें कितने भी आप गोते लगा लें तो कभी उसका अंत नहीं मिलता, इतना गहरा है वो खजाना।
0: और इसी खजाने को हम टटोलते जाएंगे कड़ी दर कड़ी। शुभा जी, वर्षा काल या बारिश या वर्षा ऋतु कहने से बंदिशें जो आपसे अब हम सुनेंगे, बहुत से ऐसे कुछ शब्द जो मन को बड़ा मोह लेते हैं। आप तो कह रही थी कि बरखा हो ना हो, बूंदाबांदी हो या अकाल हो, तो ये जो साहित्यिक रूप है शास्त्रीय संगीत में, उपशास्त्रीय संगीत में या लोक संगीत में बारिश का, उसको लेके कि घने बादल, बादलों की उमड़ घुमड़, काली घटा, दादुर मोर पपीहे की बोली और बिजरी छाने वाली बदरी, और ये बदरी न सिर्फ आकाश में, आंखों में भी बदरी छा जाती है वाली बात, तो संयोग और वियोग, श्रृंगार की बातें, काफी सारी चीजें आप हमसे बतियाती जाएंगी और हमारे सभी श्रोताओं को ये श्रृंखला बहुत ही पसंद आएगी। आज हम किस राग से या किस पद से आरंभ कर रहे हैं?
1: मैंने सोचा है कि आज जो पहली प्रस्तुति मैं करूं वो राग शुद्ध मल्हार की एक मध्यलय रचना आपको सुनाना चाहूंगी। शुद्ध मल्हार न केवल रागांग राग है, यानी कि शुद्ध मल्हार के जो अंग हैं, जो इसकी विशेषताएं हैं, उनको ध्यान में रख के अलग अलग मल्हार के प्रकार, जो कि बहुत विभिन्न प्रकार हैं हमारे पास, इसका कुछ अंश लेके उनकी रचना की गई है। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जनक सा साधक माना जा सकता है। तो इसकी जो विशेषताएं हैं, इसके जो विशेष स्वर संगतियां हैं, वो आपको अन्य मल्हारों में मिलेंगी। प्राचीन राग भी है, जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें भी इसका उल्लेख मिलता है। कुछ में इसे मल्हार कहा गया है, कुछ में मलार कहा गया है, कुछ में मल्लारी कहा गया है, कुछ में मेघ भी कहा गया है, मेघ मल्हार भी कहा गया है। लेकिन जो मुझे तालीम में बताया गया है कि राग शुद्ध मल्हार जो है वो ही रागांग राग है, और इसकी कुछ विशेषताएं मैं आपको बताना चाहूंगी। बिलावल थाट का राग है ये, और इसमें जो विशेष स्वर संगतियां हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। मल्हार का आप कह सकते हैं कि जो प्राण स्वर समूह है वो एक ये है, मारे रे पा सामा रे।

0: तो ये शुद्ध मल्हार का स्वरूप हमें बताया गया है
1: जी
0: और इसमें एक तीन ताल में निबद्ध रचना मैं सुनाना चाहूंगी, धूम धाम ते आई बदरिया। तो
1: धूम धाम ते
0: हाँ,
1: आई बदरिया, वाह।
0: जो स्वर में जो इसके जो अक्षर हैं इसमें ही एक एक भारी भरकम एक चीज है,
1: जी
0: धूम धाम ते आई बदरिया, गरज बरसे झहरे झूम झूम।
1: झरे,
0: जी मतलब जो एक झरने की तरह जैसे
1: जी
0: फूटता है उस
1: हाँ
0: तरह, गरज बरसे झहरे झूम झूम। अंतरा कहता है मोरवा शोर करे पपिहा पुकारे,
1: वही जो मोर शोर करत है।
0: जी
1: जी
0: मोरवा शोर करे पपिहा पुकारे, तापे पवन चलत सूम सूम।
1: हाँ,
0: ये रचना सुनाऊंगी।
1: जी ये ताल कौन सी?
0: तीन ताल।
1: तीन ताल में निबद्ध है। और शुभा जी, शुद्ध मल्हार किस जाति का राग है?
0: इसमें पांच स्वर
1: सर
0: लगते
1: है
0: हैं तो
1: तो ये
0: औड़व जाती है।
1: औड़ जाती है, तो मैं तो उत्कंठित हूँ ही, सुनाइए ना।

0: श्रोता मित्रों, आज की कड़ी हम यहीं समाप्त करते हैं। शुभा दीदी से हम अगली कई कड़ियों में मुलाकात करेंगे। आज शुभा जी को भी नमस्कार। नमस्कार।
1: संगीत सरिता में आप सुन रही हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? एक शोधन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: शोधन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: विशेष जयमाला।

0: फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है जाने माने संगीतकार जयदेव ने।
1: फौजी भाइयों, जयदेव का सलाम। इस जयमाला के बारे में मैं सोच ही रहा था कि एक बहुत पुरानी याद आई। 1943 की बात है। दोपहर के वक्त मैं सो रहा था कि अचानक मेरे छोटे भाई ने मुझे आकर जगाया और कहा, भैया सुनिए, रेडियो से एक बहुत ही खूबसूरत और नए अंदाज का गाना आ रहा है। मैंने सुना और सुनते ही उस गीत में खोसा गया। एक अजीब कैफियत की आवाज़ और गाने का बिल्कुल नया अंदाज, पुरअसर मस्ती भरा। गीत ख़त्म हुआ तो नाम अनाउंस हुआ, कुमार सचिन देव बर्मन। बस उसी दिन से मैं सचिन दा का आशिक हो गया। उनसे मेरी पहली मुलाकात 48 में हुई, जब दादा जोधपुर में ऑल इंडिया म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आए थे। मैं तो उनके इर्द गिर्द ही घूमता रहा। और फिर एक दिन वो भी आया जब 1954 में उन्होंने मुझे अपना असिस्टेंट बना लिया। 54 से 61 तक मैं बराबर बर्मन दादा के साथ रहा। उनकी कितनी बातें इस वक्त मुझे याद आ रही हैं, लेकिन बातें बाद में, पहले वही गीत सुन लीजिए।

संगीत के अलावा बर्मन दादा का एक और भी शौक था, वो था स्पोर्ट्स, ख़ास तौर से फुटबॉल। इस खेल के मैचेस के दौरान में बर्मन दादा सब काम बंद कर देते थे, बस हर वक्त फुटबॉल का ही चर्चा रहता था। अगर उनकी मनपसंद टीम जीत गई तब तो प्रोड्यूसर्स का काम फौरन शुरू हो जाता था, और अगर बदकिस्मती से टीम हार गई तो समझ लीजिए कि प्रोड्यूसर्स के यहाँ भी एक हफ्ते तक काम बंद, फिर चाहे कितना ही नुकसान क्यों ना हो। अक्सर मैं नए गाने वालों या शायरों से यही कहा करता था कि अगर दादा के करीब आना है और उनके साथ काम करने का शौक़ है तो फुटबॉल के मैच का इंतज़ार करो, टीम जीत गई, दादा की टीम जीत गई तो तुम्हारा काम बना समझो, और अगर टीम हार गई तो अगले मैच तक फिर इंतज़ार करो। दादा को पान खाने का बहुत शौक़ था, हर वक्त पान की डिबिया साथ रहती थी, लेकिन उनके अलावा उस डिबिया का पान किसी को नहीं मिलता था। मैं उन चंद खुशनसीब लोगों में से हूँ जिन्हें दादा अपना पान बड़े प्यार से दिया करते थे। न सिर्फ पान खाने का बल्कि पान में जर्दा खाने का चस्का मुझे वहीं से लगा। उनकी गोरी गोरी हथेली पर रखा हुआ जर्दा खाने का अजीब ही मज़ा था। खैर, आप कहेंगे कि जयदेव सिर्फ बातें कर रहा है, लीजिए दादा का एक और गीत जो मुझे बेहद पसंद है, सुनिए।

फौजी भाइयों, आज न जाने क्यों बहुत सी पुरानी और प्यारी यादें ताज़ा हो उठी हैं। अब जो गाना आपको सुना रहा हूँ, ये दुल्हन एक रात की फिल्म का है। संगीत निर्देशक हैं मेरे बहुत ही प्यारे अजीज दोस्त स्वर्गीय मदन मोहन। मदन भैया का भी बर्मन दादा की तरह से अपना ही अलग अंदाज था, ख़ास तौर से गज़लों में। वो किसी भी गाने को संवारने में और सजाने में अपना सानी नहीं रखते थे। लीजिए गाना सुनिए।

लीजिए, अब मैं आपको फिल्म चित्रलेखा का एक बहुत ही खूबसूरत गाना सुना रहा हूँ। संगीत निर्देशक हैं स्वर्गीय रोशन। रोशन जी से मेरी मुलाकात उन दिनों हुई जब वो दिल्ली

रेडियो पर काम करते थे और मैं वहाँ से गाया करता था। 1947 की बात है। बाद में जब रोशन म्यूज़िक डायरेक्टर बनकर बम्बई आए तो उन्होंने मुझे फिल्म नेकी बदी के लिए एक गीत गाने के लिए बुलवाया भी था, मगर मैं गा नहीं पाया था, कुछ नर्वस सा हो गया था। खैर, बाद में रोशन जी ने फिल्मों में बहुत ही सुंदर संगीत दिया। उनका ये गाना मुझे बेहद पसंद है जो मैं अब आपको सुनवा रहा हूँ। उनका भी बर्मन दादा और मदन मोहन की तरह से अपना अलग ही अंदाज था।

अब एक गाना फिल्म प्रेम पर्वत का सुनिए, लिखा है स्वर्गीय जानसार अख्तर ने। अख्तर साहब न सिर्फ एक ऊंचे दर्जे के शायर थे, फिल्मी गीत भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत लिखे हैं। बहुत ही प्यारे आदमी थे, उनकी शायरी और उनकी शख्सियत दोनों को भुलाना नामुमकिन है। ये गाना उन्होंने हमारे सामने बैठकर सिर्फ आधे घंटे में लिख दिया था, लीजिए सुनिए।

0: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय माला।
1: हमारे देश में एक बहुत ही बड़ी कलाकार गुजरी हैं, जिनके गाने का एक अजीब अंदाज था, आवाज में एक जादू था, ऐसा जादू जिसका असर बच्चे, नौजवान, बूढ़े हर किसी के दिल में था और आज भी है। बेगम अख्तर वो नहीं, लेकिन उनकी आवाज़ का जादू आज भी जिंदा है और जिंदा रहेगा।

फौजी भाइयों, हमारे साथियों में एक ऐसे भी संगीत निर्देशक थे जिनका मकसद सिर्फ फिल्मों में संगीत देखकर नाम या पैसा कमाना ही नहीं था। वो बड़े बड़े कारखानों में, मिलों में जाते, वहाँ काम करने वाले कामगारों को इकट्ठा करते और उनको देशभक्ति के गीत सिखाते और गवाते। स्कूलों के हज़ारों बच्चों को इकट्ठा करके कोरस गाने इस देश में सिर्फ उन्होंने ही गवाए हैं। उनकी तमन्ना संगीत के ज़रिए देश में जन जागरण पैदा करना था। फिल्मों में भी उन्होंने बहुत खूबसूरत संगीत दिया है। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। ये थे वसंत देसाई।

फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है जाने माने संगीतकार जयदेव ने। सुनिए कार्यक्रम का शेष भाग।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज जबलपुर में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। प्रदेश भर में 7 अगस्त से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान चलाया जाएगा और आगामी 24 घंटों के दौरान राजगढ़, अलीराजपुर सहित प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। इस अभियान के अंतर्गत हर रविवार देश भर में जागरूकता और जनभागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें खेल प्रतियोगिताएं, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल हैं। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें समाज में सकारात्मक बदलाव का वाहक बनाना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में 362 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार अमृत 1.0 सीवेज परियोजना और कठौदा, ललपुर और तेवर में बने 3 बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण पहल करते हुए जबलपुर स्थित मेडिकल यूनिवर्सिटी का विकास एम्स की तर्ज पर किया जाएगा।
1: अब एम्स भारत सरकार के माध्यम से क्यों बनना चाहिए? एम्स हमारा प्रदेश का भी बने, इसलिए यहाँ मेडिकल यूनिवर्सिटी हमारा एम्स के रूप में विकसित होगी। भविष्य में ये जबलपुर का मॉडल बनेगा जो बाकी जगह हम लगाएंगे। विकास के लिए परिपूर्ण प्लान बनाने की जरूरत है। ऐसे में इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन सिटी बनी, भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी बनी, तो मैं यहीं से घोषणा कर रहा हूं जबलपुर भी मेट्रोपॉलिटन सिटी बनेगा, 1 साल के अंदर बनेगा, ये हमारा संकल्प है।
0: इस दौरान मुख्यमंत्री ने डुमना नेचर पार्क में कैच द रेन अभियान के अंतर्गत 11 लाख पौधारोपण अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत उमरिया, डुमना और कठौंदा में मियावी की पद्धति से 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के प्रभाव को और अधिक व्यापक बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में आज से विशेष पीएम स्वनिधि पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। नगरीय विकास और आवास विभाग द्वारा 15 अगस्त तक ये अभियान प्रदेश के सभी जिलों, नगरीय निकायों और संबंधित सेंसेक्स टाउन में एक मिशन मोड कार्यक्रम के रूप में संचालित किया जाएगा। अभियान की थीम स्वनिधि से समृद्धि, आत्मनिर्भर शहरी मध्य प्रदेश की ओर निर्धारित की गई है। अभियान के माध्यम से वित्तीय समावेशन, डिजिटल सशक्तिकरण, स्वरोजगार संवर्धन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को गति प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश भर में जन जागरूकता गतिविधियों, विशेष शिविरों, बैंक समन्वय बैठकों, हितग्राही संपर्क अभियानों और मीडिया और डिजिटल संचार गतिविधियों के माध्यम से अधिकतम पात्र पथ विक्रेताओं तक पहुँच बनाई जाएगी। केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। मंत्रालय द्वारा जारी राज्यवार विवरण के अनुसार मध्य प्रदेश को 8,010 करोड़ रुपए मिले हैं।

0: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश भर में 7 अगस्त से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले जन विश्वास दौरे पर 7 अगस्त को छिंदवाड़ा में आयोजित जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज चिन्हित शिकायतकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं के निराकरण की समीक्षा करेंगे। 8 जनवरी 2027 तक चलने वाले मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का उद्देश्य शासन और नागरिकों के बीच विश्वास को सुदृढ़ करना, शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निराकरण को सुनिश्चित करना और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करना है। इस दौरान मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारी नियमित मैदानी भ्रमण कर आमजन से संवाद करेंगे। प्रदेश में आज से विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। आगामी 7 अगस्त तक चलने वाले सप्ताह के दौरान विभिन्न जनजागरूकता और स्वास्थ्य संवर्धन गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। सीहोर जिले में कलेक्टर ने जिले के CMHO, DPO, जनपद CEO, सभी BLO सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सप्ताह के दौरान सभी गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपये कम कर दी है। कटौती के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 2738 रुपये हो गई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी। 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर वस्त्र मंत्रालय 7 अगस्त को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय समारोह का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में उपस्थित रहेंगी। मंत्रालय ने कहा कि इस समारोह का उद्देश्य भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत का उत्सव मनाना और राष्ट्र के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में हथकरघा बुनकर समुदाय के योगदान को मान्यता देना है। अब बात मौसम की। प्रदेश में पिछले 48 घंटों के दौरान मालवा, निमाड़ क्षेत्र, विशेषकर इंदौर और उज्जैन संभाग में कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई। खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, रतलाम और धार समेत पश्चिमी जिलों में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के राजगढ़, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी और श्योपुर कला जिलों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभागों के कई जिलों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर राजगढ़ पुलिस ने जिले भर में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया। मानव तस्करी की रोकथाम और जन जागरूकता विषय पर बहुहितधारक कार्यशाला आयोजित की गई। खंडवा में महान गायक और अभिनेता किशोर कुमार के जन्म दिवस के अवसर पर 2 से 4 अगस्त तक 3 दिवसीय खंडवा गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा। शहडोल जिले में पुलिस विभाग पेपरलेस कामकाज की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। ऑनलाइन FIR के बाद अब जिले में अपराधों की जांच पूरी तरह से डिजिटल होगी। खरगोन जिला सहकारी केंद्र बैंक ने रबी उपार्जन, रासायनिक खाद वितरण, ई विकास पोर्टल के सफल संचालन, कृषि ऋण वितरण और ऋण वसूली जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। और मंडला जिले में की अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर शुचि उपाध्याय का चयन राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA के विशेष प्रशिक्षण शिविर के लिए हुआ है। ये शिविर 2 से 27 अगस्त तक बेंगलुरु में आयोजित होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

जी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार, तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में।

0: हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम, कोई करता चमर होगा।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया। कहने लगे, बरखुरदार, अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।
3: आप हैं विविध भारती के संग।

जिज्ञासा ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर है, वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। मीराबाई ने लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। 48 किलोग्राम की स्पर्धा में मीराबाई ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। उन्होंने स्नैच में 85 किलोग्राम, क्लीन एंड जर्क में 105 किलोग्राम समेत कुल 190 किलो वजन उठाया। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में स्नैच में 85 किलो वजन उठाया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। मीराबाई चानू ने लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन वो इससे पहले सिल्वर मेडल भी जीत चुकी हैं। आपको बता दें, उन्होंने साल 2014 में ग्लासगो में ही कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था। इसके बाद उन्होंने साल 2018 गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। मीराबाई ने टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता था, जो कि एक इतिहास है, और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला थी। पैरा एथलीट दिलीप महादू गावित ने पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में गेम्स रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है, जबकि मुरली श्रीशंकर ने पुरुषों की लंबी कूद में दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों का सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। जहां तक इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने के दौरान भारत को मिले गोल्ड मेडल की बात है, तो वो आपको बता दें, मीराबाई चानू महिला 48 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग गोल्ड मेडल, शर्मिला धनखड़ पैरा एथलेटिक्स महिला शॉटपुट में गोल्ड मेडल, और दिलीप महादू गावित पैरा एथलेटिक्स पुरुषों की 100 मीटर में गोल्ड मेडल। ग्लासगो के ट्रैक पर आखिरी लैप शुरू हुआ तो भारतीय धावक गुलवीर सिंह के सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, देश के लिए कुछ ऐसा करना जो कि पहले कभी किसी भारतीय ने नहीं किया था। कुछ ही सेकंड के बाद फिनिश लाइन पार करते हुए घड़ी 27:49.78 पर रुकी। ये सिर्फ एक समय नहीं था, बल्कि कई सालों के संघर्ष, अनुशासन और ख्वाबों का इनाम था। गुलबीर सिंह ने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। वो राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट बन गए। लेकिन इस ऐतिहासिक दौड़ की शुरुआत ग्लासगो से नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सिरसा से हुई है, जो अलीगढ़ जिले में आता है। 1 जून 1998 को यहीं एक किसान परिवार में गुलवीर सिंह जन्मे थे। गांव में खेलों के बारे में ज्यादा जागरूकता नहीं थी, और उस गांव के युवाओं का सबसे बड़ा ख्वाब होता था फौज में जाना। गुलवीर भी दूसरे युवाओं की तरह फौज में जाने का ख्वाब देखते थे। उन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स या एशियन गेम्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। दौड़ना उनके लिए मेडल जीतने का नहीं, बल्कि फौज में नौकरी पाने का एक जरिया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि मुझे कॉमनवेल्थ गेम्स या एशियाई गेम्स के बारे में ज्यादा पता नहीं था। गांव का रहने वाला आदमी हूं, गांव में बहुत कम लोग इन प्रतियोगिताओं के बारे में जानते थे। साल 2018 में बचपन का एक ख्वाब पूरा हुआ। खेल कोटे में उन्हें भारतीय सेना में जगह मिल गई और ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट का वो हिस्सा बन गए। यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट और बाद में भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय शिविर में उन्हें यह समझ में आया कि दौड़ना सिर्फ नौकरी हासिल करने का एक

जरिया नहीं है बल्कि देश के लिए इतिहास बनाने का एक मौका भी हो सकता है। उन्होंने कहा था, प्रतियोगी दौड़ के बारे में मैंने वास्तव में सेना में आने के बाद ही सीखा। धीरे धीरे मुझे इस खेल और इससे जुड़े लोगों के बारे में समझ आने लगी। दिन में ड्यूटी और फिर ट्रैक पर पसीना बहाना गुलवीर सिंह की जिंदगी बन गई थी। आप जानते हैं कि सेना की नौकरी आसान नहीं होती। गुलवीर सिंह को अरुणाचल प्रदेश जैसे कठिन इलाके में तैनाती मिली। गश्त, सुरक्षा ड्यूटी और फौजी नौकरी की जिम्मेदारियों के बीच में भी उन्होंने दौड़ने की प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। पहाड़ों की ऊंचाई, वहां के मौसम के उतार चढ़ाव और सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने लगातार साधना की और अपने शरीर को और ज्यादा मजबूत बना दिया ताकि वो हर विपरीत परिस्थिति का सामना कर सके। 4 साल बाद इस साधना का पहला बड़ा इनाम मिला। सेना में आने के बाद गुलबीर को पहले तो तुरंत सफलता नहीं मिली, लेकिन लगातार 4 साल तक जो साधना उन्होंने की उसके बाद 2022 में फेडरेशन कप में 10,000 मीटर की दौड़ का कांस्य पदक उन्होंने जीता और इसके बाद गुलबीर सिंह का पूरे देश में नाम हो गया। बस यही वो मोड़ था जहां से वो लगातार आगे बढ़ने लगे। इसके बाद तो उन्होंने जैसे एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाए। साल 2024 में गुलबीर ने अमेरिका के कोलोराडो स्प्रिंग्स में ट्रेनिंग शुरू की। इसके बाद जैसे भारतीय एथलेटिक्स को एक नया सितारा मिल गया। उन्होंने 3,000 मीटर, 5,000 मीटर और 10,000 मीटर के नेशनल रिकॉर्ड्स तो लगातार तोड़े हैं। 2025 में उन्होंने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 5,000 और 10,000 मीटर दोनों ही मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीता और इतिहास रच दिया। इसी दौरान 10,000 मीटर की रेस में उन्होंने 27 मिनट का एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया और हाफ मैराथन को 60 मिनट से कम समय में पूरे करने वाले वो पहले भारतीय बन गए। आप समझ सकते हैं कि ये सारी उपलब्धियां हासिल होती चली जा रही थीं, लेकिन गुलबीर जानते थे कि ये उनकी मंजिल नहीं है। उनकी मंजिल तो कुछ और है। वो कहते भी हैं कि वो रिकॉर्ड्स के लिए नहीं बल्कि देश के लिए दौड़ते हैं। इतनी उपलब्धियों के बावजूद गुलबीर को इन रिकॉर्ड्स का कोई गुरूर नहीं है। उनका ये कहना है कि वो कभी आंकड़ों के बारे में या रिकॉर्ड्स के बारे में नहीं सोचते। हर रेस में वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं और यही बात गुलबीर को कामयाब बनाती है और हम ये प्रार्थना करते हैं कि आगे भी उनकी कामयाबी का सिलसिला जारी रहे। आज के जिज्ञासा कार्यक्रम में हमने आपको मीराबाई चानू के बारे में बताया कि किस तरह से उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। मीराबाई चानू भारतीय वेटलिफ्टिंग का एक शानदार सितारा हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी का सफर किस तरह से तय किया ये आज हम जिज्ञासा में बता रहे हैं ताकि आप सभी को प्रेरणा मिल सके। 8 अगस्त 1994 को मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 20 किलोमीटर दूर एक गाँव है नोंगपे काकचिंग, यहां पर मीरा का जन्म हुआ था। 6 भाइयों में मीरा चानू सबसे छोटी हैं। परिवार गरीब था। मीरा के पिता साइखोम कृति मैतेई राज्य के लोक निर्माण विभाग में कार्यरत थे और उनकी मां साइखोम तुम्बी देवी एक छोटी सी चाय की दुकान चलाती थी। बहुत सीमित संसाधनों के साथ मीराबाई चानू और उनके भाई बहन परिवार की ईंधन की लागत को कम करने के लिए पास में जंगलों में जाते और लकड़ियां इकट्ठा करते ताकि घर में चूल्हा जल सके। यही वो वक्त था जब मीराबाई चानू की वजन उठाने की प्रतिभा सामने आई। उस समय मीराबाई चानू की उम्र 12 साल थी। वो अपने 16 साल के भाई साइखोम संतोम्बा मैतेई के साथ अपने गांव के पास जंगलों में जलाऊ लकड़ी की सफाई के लिए गई थी। इन दोनों भाई बहनों को उस दिन बहुत सारी लकड़ियां मिली, एक बड़ा ढेर बन गया। इस दौरान जब लकड़ियों के इस बड़े से बंडल को उठाने की बात आई तो संतोम्बा को इस ढेर को उठाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन सिर्फ 12 साल की उसकी छोटी बहन मीराबाई चानू ने इतने विशाल बंडल को आसानी से अपने सिर पर रख लिया और घर पहुंचने के पहाड़ी रास्ते में 2 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया, जिसे देखकर भाई को बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। हालांकि संतोम्बा ये समझ गए थे कि मीराबाई वेटलिफ्टिंग कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद मीराबाई का शुरुआती रुझान तीरंदाजी को लेकर था।
मीराबाई ने ये बताया भी है कि उनके परिवार में जो उनके भाई, चचेरे भाई सभी फुटबॉल खेलते रहे हैं। एक दिन खेल के बाद वो गंदे होकर लौट रहे थे, तो मीराबाई के मन में आया कि मैं ऐसा खेल खेलना चाहती हूँ जहाँ गंदे होकर ना लौटें, जो साफ सुथरा खेल हो। तो सबसे पहले मेरा ध्यान तीरंदाजी की तरफ गया, क्योंकि ये बहुत ही स्टाइलिश खेल है, और एक तीरंदाज बनने की चाहत में मीराबाई चानू अपने चचेरे भाई के साथ इम्फाल के खुमान लंपक स्टेडियम में भारतीय खेल प्राधिकरण में चली गईं। वहां उस दिन कोई तीरंदाजी का अभ्यास नहीं कर रहा था। उस दिन उन्होंने देखा कि कुछ एथलीट वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। बस मीराबाई का ध्यान इस तरफ घूम गया और उन्होंने सोचा कि वो तीरंदाजी नहीं बल्कि वेट लिफ्टिंग करेंगी। इस बीच मीराबाई चानू को मणिपुर की एक और वेटलिफ्टर कुंजा रानी देवी के बारे में पता चला, जिन्होंने भारत को 7 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल और साल 2002 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जिताने का काम किया था, और वो भी बहुत ही संघर्ष के रास्ते से आ रही थी। खेल के प्रति ये जो जुनून था कुंजा रानी देवी का, इसे देखकर मीराबाई चानू बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। अपने गांव में वेटलिफ्टिंग की किसी तरह की कोई बुनियादी सुविधा थी नहीं। उन्होंने अपनी कोच अनीता चानू के नेतृत्व में ट्रेनिंग शुरू की। हर रोज 40 किलोमीटर दूर जाती। अनीता चानू एक भूतपूर्व वेटलिफ्टर थीं, जिन्होंने 1990 में बीजिंग एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। मीराबाई चानू ट्रेनिंग के लिए बस और ट्रक के जरिए अपनी मंजिल तक जाती और बांस के डंडों का इस्तेमाल करके अपनी तकनीक को बेहतर बनाती चली गईं। फिर 6 महीने के बाद उन्होंने वजन उठाने पर जोर दिया। 2 साल बाद जब नेशनल कैंप हुआ तो उसमें उन्होंने अपनी जगह बनाई और सब जूनियर कैटेगरी में राज्य स्तर का गोल्ड मेडल जीता। 2011 में मीराबाई चानू ने जूनियर कैटेगरी में पहला मेडल हासिल किया। इसके तुरंत बाद नेशनल टीम में उन्हें शामिल कर लिया गया और वो अपनी आइडल कुंजा रानी देवी के मार्गदर्शन में आ गईं। चानू ने 2013 में पिनांग राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, जो उनका पहला इंटरनेशनल मेडल था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मीराबाई चानू ने ग्लासगो में 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया और महिलाओं के 48 किलोग्राम के वर्ग में सिल्वर मेडल जीतने के बाद अपनी एक अलग पहचान बनाई। हालांकि उस वक्त उनकी उम्र 20 साल थी और 2014 में इंचियोन एशियन गेम्स में मीराबाई चानू को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, पर रियो 2016 में क्वालिफाई करने के लिए उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। रियो 2016 में मीराबाई चानू से बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं। क्लीन एंड जर्क में मीराबाई चानू कोई भी कमाल नहीं कर पाईं और मेडल जीतने का सपना पूरी तरह से टूट गया। इस भारी असफलता ने मीराबाई चानू को तोड़ कर रख दिया था। 2017 में वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने शानदार प्रदर्शन किया। 194 किलोग्राम का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ भार उठाकर उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। 48 किलोग्राम के वर्ग में एक चैंपियनशिप रिकॉर्ड भी उन्होंने हासिल किया। 1995 में करणम मल्लेश्वरी के बाद ये वर्ल्ड लेवल का भारत का पहला गोल्ड मेडल था। इसके बाद तो वो आगे बढ़ती चली गई और उन्हें भारत सरकार ने न केवल पद्मश्री बल्कि राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित किया। साल 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में 48 किलोग्राम की कैटेगरी में मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद थाईलैंड में जब 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई तो बहुत कम अंतर से वो मेडल जीतने से चूक गईं, लेकिन 2020 में एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में उन्होंने इतिहास रच दिया। कुल 205 किलोग्राम का वजन उठाकर कॉन्टिनेंटल मीट में 39 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने कांस्य पदक जीता, और इसके बाद मीराबाई चानू ने चीन की जियांग हुईजुआ के 118 किलोग्राम के पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया। फिर 2020 में मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में अपने अधूरे सपने को पूरा किया और 39 किलोग्राम की कैटेगरी में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, और ये एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी था।
था। इस तरह से ओलंपिक के वेटलिफ्टिंग इवेंट में ये भारत का पहला सिल्वर मेडल था। तो कुल मिलाकर मीराबाई चानू वो हैं जिन्होंने भारत के लिए लगातार उपलब्धियां हासिल की हैं। कमाल किया है उन्होंने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में, और ये एक बड़ी उपलब्धि है। मीराबाई चानू भारत की लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये था इस बार का जिज्ञासा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख स्वर और संपादन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। अब मिलते हैं अगले हफ्ते। जिज्ञासा।

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
1: दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी। सुनो कहानी में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी पिसनहारी का कुआं। आज प्रस्तुत है इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। वाचन स्वर अमरकांत दुबे का।
2: अब तक आपने सुना गोमती ने मृत्युशैया पर पड़े हुए अंतिम शब्द जो कहे। चौधरी, मेरे जीवन की यही लालसा थी कि उनके नाम का एक छोटा सा कुआं बन जाए। गांव के सरपंच से बुढ़िया गोमती ने ये बात कही और जीवन भर अनाज पीस पीस कर जो पैसे उसने कमाए थे वो चौधरी के हाथ में रख दिए, पूरे 2000 रुपए। चौधरी के बेटे हरनाथ को जब ये बात पता चली कि उसके पिता चौधरी के पास 2000 रुपए हैं जिन्हें वो कुआं बनवाने में खर्च करना चाहते हैं, तो वो अपने पिता चौधरी को लालच देता है कि वो ये 2000 रुपए उसे दे दे ताकि वो इन पैसों को अनाज के आढ़त के काम में लगा सके और इससे होने वाले मुनाफे में वो उसे भी हिस्सा देगा। चौधरी ने काफी ना नुकुर करने के बाद लालचवश अपने बेटे हरनाथ की बात को मान लिया और उसे 2000 रुपए दे दिए। लेकिन साल दर साल बीतते रहे। हरनाथ हर साल पिता के हाथों में ब्याज की रकम रख देता और मूल वापस न करता। कुछ सालों के बाद एक दिन चौधरी ने लोक लाज के डर से हरनाथ पर दबाव डाला और पूरी रकम ले ली। हरनाथ ने भी तैश में आकर रकम पूरी वापस कर दी, ये सोचकर कि रात में वो इन रुपयों को चौधरी के कमरे से चोरी कर लेगा। लेकिन जब रात में चोरी करने के लिए हरनाथ उस कमरे में घुसा तो उसे वहाँ गोमती खड़ी दिखाई दी जो उसे चोरी करने से रोक रही थी। हरनाथ उसे चुड़ैल समझकर वहाँ से भाग आया। सुबह हरनाथ की माँ ने अपने पति चौधरी को ये सारी बात बताई और चौधरी के कहने पर खुद उस कमरे में रुपए उठाने के लिए गई, लेकिन वहाँ उसे भी गोमती खड़ी दिखाई दी। उसने कमरे से बाहर निकलकर चौधरी से कहा, वहाँ तो चुड़ैल खड़ी है। अब सुनिए आगे। चौधरी ने ताक की ओर देखकर कहा, चुड़ैल? कौन चुड़ैल? अरे मुझे तो कोई नहीं दिखता। पत्नी बोली, अरे मेरा तो कलेजा धक धक कर रहा है, ऐसा मालूम हुआ जैसे उस बुढ़िया ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। चौधरी बोला, ये सब भ्रम है भ्रम, बुढ़िया को मरे 5 साल हो गए, अब तक वो यहाँ बैठी है क्या? पत्नी बोली, मैंने साफ साफ देखा, वही थी। बच्चा भी कहते थे कि उन्होंने रात को थैलियों पर हाथ रखे देखा था। चौधरी बोला, वो रात को मेरी कोठी में कब आया? पत्नी बोली, तुमसे कुछ रुपयों के विषय में ही कहने आया था, उसे देखते ही भागा। अच्छा, फिर तो अंदर जाओ, मैं देख रहा हूं, चौधरी ने कहा। स्त्री ने कान पर हाथ रखकर कहा, ना बाबा, अब मैं उस कमरे में कदम न रखूंगी। अच्छा ठीक है, मैं जाकर देखता हूं। ये कहते हुए चौधरी ने कोठरी में जाकर दोनों थैलियां ताक पर से उठा ली। किसी भी प्रकार की शंका न हुई, गोमती की छाया का कहीं नाम भी न था। पत्नी द्वार पर खड़ी झांक रही थी। चौधरी ने आकर गर्व से कहा, मुझे तो कहीं कुछ न दिखाई दिया, वहां होती तो कहां चली जाती? पत्नी बोली, क्या जाने, तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दी? तुम्हें भ्रम था और कुछ नहीं, चौधरी बोला, खड़ा तो हूं, आकर देख क्यों नहीं लेते? पत्नी को कुछ आश्वासन हुआ, उसने ताक के पास जाकर डरते डरते हाथ

0: आया, जोर से चिल्लाकर भागी और आंगन में आकर ही दम लिया। फिर उसने चौधरी भी उसके साथ आंगन में आ गया, विस्मय से बोला, क्या था, क्या है? अरे व्यर्थ में भागी चली आई, मुझे तो कुछ दिखाई न दिया। पत्नी ने हांफते हुए तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा, चलो हटो, अब तक तो तुमने मेरी जान ही ले ली थी, न जाने तुम्हारी आंखों को क्या हो गया है। अरे खड़ी तो है वो डायन। इतने में हरनाथ भी वहां आ गया, माता को आंगन में पड़े देखकर तिलमिलाकर कहा, क्या है अम्मा, कैसा जी है? पत्नी बोली, वो चुड़ैल आज दो बार दिखाई दी बेटा, मैंने कहा लाओ तुम्हें रुपए दे दूं, फिर जब हाथ में आ जाएंगे तो कुआं बनवा दिया जाएगा। लेकिन जो ही थैलियों पर हाथ रखा, उस चुड़ैल ने मेरा हाथ पकड़ लिया, प्राण से निकल गए मेरे तो। हरनाथ ने कहा, किसी अच्छे ओझा को बुलाना चाहिए जो इसे मार भगाए। चौधरी बोले, क्या रात को तुम्हें भी दिखाई दी थी? हरनाथ ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे पास एक मामले पर सलाह करने आया था। जो ही अंदर कदम रखा, वो चुड़ैल ताक के पास खड़ी दिखाई दी, मैं तो बदहवास होकर भागा। चौधरी बोले, मगर मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता, ये बात क्या है? हरनाथ ने कहा, क्या जाने, आपसे डरती होगी। चौधरी बोले, कुछ समझ में नहीं आता, माजरा क्या है, क्या हुआ बैजू पांडे की डिग्री का? हरनाथ इन दिनों चौधरी से इतना जलता था कि अपनी दुकान के विषय में कोई बात उससे करता ही न था। आंगन की तरफ ताकता हुआ मानो हवा से बोला, जो होना होगा वो होगा, मेरी जान के सिवा कोई और क्या ले लेगा। कहीं उसने डिग्री जारी कर दी तो? चौधरी बोले, तो हरनाथ ने कहा, तो क्या, दुकान में 400-500 का माल है, वो नीलाम हो जाएगा, बहुत होगा तो 4-6 महीने हवालात में रहना पड़ेगा, इसके सिवा और क्या हो सकता है। चौधरी को पुत्र से प्रगाढ़ प्रेम था, उन्हें शंका हो गई थी कि हरनाथ रुपए हजम करने के लिए ही टाल मटोल कर रहा है, इसलिए उन्होंने आग्रह करके रुपए वसूल कर लिए थे। अब उन्हें अनुभव हुआ कि हरनाथ के प्राण तो सचमुच संकट में है। एकाएक किसी ने बाहर से पुकारा, हरनाथ सिंह। हरनाथ के मुंह पर हवाइयां उड़ने लगी। चौधरी ने पूछा, कौन है? कुर्क अमीन है। क्या, दुकान कुर्क कराने आया है? हाँ, मालूम तो होता है। कितने रुपयों की डिग्री है? 1200 रुपयों की। कुर्क अमीन कुछ लेने देने से न टलेगा? टल तो जाता, पर महाजन भी तो उसके साथ होगा, उसे तो कुछ ना कुछ लेना ही है, उधर से ले चुका होगा। न हो 1200 रुपये गोमती के रुपयों में से दे दो, उसके रुपए कौन छुएगा, न जाने घर पर क्या आफत आ जाए। अरे उसके रुपए कोई हजम थोड़ी ही किए लेता है, चलो मैं दे देता हूं। चौधरी को इस समय भय हुआ, कहीं मुझे भी वो न दिखाई दे, लेकिन उनकी शंका निर्मूल थी। उन्होंने एक थैली से 220 रुपए निकाल लिए और दूसरी थैली में रख हरनाथ को दे दिए। संध्या तक इन 2000 रुपयों में से 1 रुपया भी न बचा। 12 साल गुजर गए, न चौधरी अब इस संसार में है न हरनाथ। चौधरी जब तक जिए उन्हें कुएं की चिंता बनी रही। चौधरी के मरते ही सारा कारोबार चौपट हो गया। चौधरी की मृत्यु के ठीक साल भर बाद हरनाथ ने भी इस हानि लाभ के संसार से पयान किया। माता के जीवन का अब कोई सहारा न था, बीमार पड़ी पर दवा दर्पण न हो सकी। 3-4 महीने तक नाना प्रकार के कष्ट झेलकर वो भी चल बसी। अब केवल बहू थी और वो भी गर्भिणी। उस बेचारी के लिए अब कोई आधार न था। पड़ोसियों के कपड़े सी कर उसने किसी भांति 5-6 महीने काटे। तेरे लड़का होगा, सारे लक्षण बालक कैसे थे, यही एक जीवन का आधार था। जब कन्या हुई तो ये आधार भी जाता रहा। माता ने अपना हृदय इतना कठोर कर लिया कि नवजात शिशु को छाती भी न लगाती थी। बालिका की वो भोली दीन याचनामय सतृष्ण छवि देखकर उसका मात्र हृदय मानो सहस्त्र नेत्रों से रुदन करने लगा। उसके हृदय की सारी शुभेच्छाएं, सारा आशीर्वाद, सारी विभूति, सारा अनुराग मानो उसकी आंखों से निकलकर उस बालिका को उसी भांति रंजित कर देता था जैसे इंदु का शीतल प्रकाश पुष्प को रंजित कर देता है। पर उस बालिका के भाग्य में मात प्रेम के सुख न बधे थे। माता ने कुछ अपना रक्त कुछ ऊपर का दूध पिलाकर उसे जिलाया, पर उसकी दशा दिनों दिन जीर्ण होती जाती थी। एक दिन लोगों ने जाकर देखा तो वो भूमि पर पड़ी हुई थी। शोक और दरिद्रता से आहत शरीर में रक्त कहां जिससे दूध बनता। वही बालिका पड़ोसियों की दया भिक्षा से पल पल कर एक दिन घास खोदती हुई उस स्थान पर जा पहुंची जहां बुढ़िया गोमती का घर था। बालिका ने न जाने क्या सोचकर खुरपी से गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। दोपहर से सांझ तक वो गड्ढा खोदती रही। अंधेरा हो गया पर वो ज्यों की त्यों बैठी गड्ढा खोद रही थी। उस समय किसान लोग भूलकर भी उधर से निकलते न थे, पर बालिका निशंक बैठी भूमि से मिट्टी निकाल रही थी। जब अंधेरा हो गया तो वो चली गई। दूसरे दिन वो बड़े सवेरे उठी और इतनी घास खोदी जितनी कि वो दिन भर में भी न खोदती थी। दोपहर बाद वो अपनी खांची और खुरपी लिए फिर उसी स्थान पर जा पहुंची, पर वो आज अकेली न थी। उसके साथ दो बालक और भी थे। बालिका गड्ढे के अंदर खोदती थी और दोनों बालक मिट्टी निकाल निकाल कर फेंकते थे। तीसरे दिन दो लड़के और भी उस खेल में मिल गए। शाम तक खेल होता रहा। आज गड्ढा दो हाथ गहरा हो गया था। चौथे दिन और भी कई बालक आ मिले। गड्ढा अब चार हाथ गहरा हो गया था, पर अभी तक बालकों के सिवा और किसी को कोई खबर न थी। एक दिन रात को एक किसान अपनी खोई हुई भैंस ढूंढता हुआ उस खंडहर में जा पहुंचा। अंदर मिट्टी का ऊंचा ढेर, एक बड़ा सा गड्ढा और एक टिमटिमाता हुआ दीपक देखा तो डर कर भागा। औरों ने भी आकर देखा। कई आदमी थे, कोई शंका न थी। समीप जाकर देखा तो बालिका बैठी थी। एक आदमी ने पूछा, अरे क्या ये तूने गड्ढा खोदा है? हाँ, बालिका ने कहा। अच्छा, गड्ढा खोद कर क्या करोगी? बालिका बोली, यहां कुआं बनाऊंगी। ओ, कुआं कैसे बनाओगी? जैसे इतना खोदा है वैसे ही इतना और खोद लूंगी। गांव के सब लड़के खेलने आते हैं। मालूम होता है तू अपनी जान देगी और अपने साथ और लड़कों को भी मारेगी। खबरदार जो कल से गड्ढा खोदा। दूसरे दिन और लड़के ना आए। बालिका भी दिन भर मजूरी करती रही, लेकिन संध्या समय वहां फिर दीपक जला और फिर वो खुरपी हाथ में लिए वहीं बैठी दिखाई दी। गांव वालों ने उसे मारा पीटा, कोठरी में बंद किया, पर वो अवकाश पाते ही वहां जा पहुंचती। गांव के लोग प्रायः श्रद्धालु होते ही हैं। बालिका के इस अलौकिक अनुराग ने आखिर उनमें भी अनुराग उत्पन्न किया। कुआं खुदने लगा। इधर कुआं खुद रहा था, उधर बालिका मिट्टी से ईंटे बनाती थी। इस खेल में सारे गांव के लड़के शरीक होते थे। उजाली रातों में जब सब लोग सो जाते तब भी वो ईंटे थापती दिखाई देती। न जाने इतनी लगन उसमें कहां से आ गई थी। 7 वर्ष की उम्र कोई उम्र होती है, लेकिन 7 वर्ष की वो लड़की बुद्धि और बातचीत में अपनी तिगुनी उम्र के लोगों के कान काटती थी। आखिर वो दिन भी आया, कुआं बंद गया, उसकी पक्की जगत तैयार हो गई। उस दिन बालिका उसी जगत पर सोई। आज उसके हर्ष की सीमा न थी। गाती थी, चहकती थी। प्रातःकाल उस जगत पर केवल उसकी लाश मिली। उस दिन से लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये वही बुढ़िया गोमती थी। इस कुएं का नाम पिसनहारी का कुआं पड़ा। हिंदी कहानी हिंदी मासिक पत्रिका माधुरी में जून 1928 में प्रकाशित हुई। मानसरोवर भाग 5 में संकलित केवल हिंदी में प्रकाशित हुई।
1: पिसनहारी का कुआं। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। वाचन स्वर था अमरकांत दुबे का। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई।
2: सुनो कहानी।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म युवराज से। आवाज़ें बेनी दयाल, श्रेया घोषाल और एआर रहमान की थी। गीत के बोल गुलजार के और संगीत एआर रहमान का।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं, वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं, जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती, 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म युवा से, आवाज़ें एआर रहमान और सुनीता सारथी की थी। गीत के बोल महबूब के और संगीत एआर रहमान का।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम।

0: सुनो जरा राइमा की फीस भरने चले जाना, आज आखिरी तारीख है।
1: देखो मैं 3 बजे नहीं जा पाऊंगा।
0: क्यों क्यों नहीं जा सकते?
1: वो मैं
0: साहब बताओ क्या करना है 3 बजे?
1: करना नहीं है, सुनना है।
0: ऐसा क्या सुनना है तुम्हें? पहेलियां मत बुझाओ, जल्दी बताओ।
1: वो मुझे सखी सहेली सुनना है।
0: तुम्हें सखी सहेली सुनना है? पर वो तो सखियों का प्रोग्राम है।
2: सखियां ही नहीं, सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे।
3: सखी सहेली।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म दिल से, आवाज़ ए आर रहमान और अनुराधा और अनुपमा की थी। गीत के बोल गुलजार के और संगीत ए आर रहमान का।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है।

0: यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरु में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी, केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। 7 भारतीय मुक्केबाज आज फाइनल में खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयां तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था।
2: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MS भी स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
1: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में NDA सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
2: मुझे पूरा विश्वास है, आज यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिनकी नींव रखी गई है, वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन रहा है। मैं एक बार फिर इन सभी परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता

0: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117.85 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है।
1: बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए स्वीकृत सहायता के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किश्त की अग्रिम राशि के रूप में 44.55 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। वहीं असम के लिए पहली किश्त के रूप में 379.35 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि गुजरात को 500 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, जिससे वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किश्त पहले ही जारी की जा चुकी है, उसे दूसरी किश्त की अग्रिम राशि के रूप में 193.95 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। वहीं ओडिशा को दूसरी किस्त के रूप में 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के लिए पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस मंजूरी का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित राज्यों में जारी राहत और बचाव कार्यों को और सुदृढ़ करना है। प्रिया मंडल के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि राज्यों को हर महीने मिलने वाली किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
2: भारत की सेना को आधुनिक बनाना, समसामयिक परिवर्तन करना, सेना के अंदर टेक्नोलॉजी और वीरता दोनों का एक अद्भुत फाइन ट्यूनिंग करना, कई प्रकार के बड़े फैसले अजीत जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं।
0: दिल्ली भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ संसद परिसर में कल धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि संसद परिसर के मकर द्वार के पास हुए प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने धार्मिक आस्था का मजाक उड़ाया, सनातन संस्कृति का अपमान किया और संत समाज का अनादर किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। एक रिपोर्ट।
3: पूर्वी सिक्किम में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा सदियों से भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले पुराने व्यापार मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद हुआ सीमा व्यापार 2006 में औपचारिक रूप से फिर से शुरू हुआ। 2020 में कोविड महामारी के कारण रोके जाने तक ये बिना किसी रुकावट के जारी रहा। इसका फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। सीमा व्यापार सोमवार से बृहस्पतिवार तक चलेगा। इसमें गेट सवेरे 7:30 बजे खुलेंगे और हर रजिस्टर्ड व्यापारी

0: को हर दिन 2 लाख रुपए तक का व्यापार करने की अनुमति होगी। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: बलूच यकजहती कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे जन आंदोलन पर पाकिस्तानी अधिकारियों की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। समिति के अनुसार यह दमनकारी रवैया असहमति की आवाजों को कुचलने की व्यापक सरकारी नीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, केरलम, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटकपुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,59,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। केरलम में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश से 6 लोगों की मौत हो गई। प्रभावित जिलों में 65 राहत शिविरों में 1400 से अधिक लोगों को पहुंचाया गया है। और अब ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
2: राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक देश के नाम किए। मुक्केबाजी में भारत ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। प्रीति ने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा की स्कारलेट सवाना डेल गाडो को 5-0 से हराया। वहीं जैस्मिन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में माइकेला वॉल्श को 5-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह ने रजत पदक जीता।
3: अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया तो काफी खुश। अगला कंपटीशन में से और ज्यादा फोकस करूंगा और अच्छा आने वाला कंपटीशन में अच्छा मेडल ले आऊं। मेडल मैं मेरे अंकल को दे करूंगा और BFI को, साई को और पूरा इंडिया जो हमारा टीम कोचेस है उन सबको दे करूंगा।
2: दिन का तीसरा स्वर्ण पदक आज एथलेटिक्स से आया, जब सोनम राणा ने पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत पदक अपने नाम किया। सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक हासिल किया।
1: इसके अतिरिक्त 7 भारतीय मुक्केबाज भी आज फाइनल में खेलेंगे। वॉल्ट फाइनल में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार की चुनौती होगी। 5,000 मीटर दौड़ के फाइनल में गुलवीर सिंह ट्रैक पर उतरेंगे। मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले फाइनल में भारतीय टीम खेलेगी। जम्मू और श्रीनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद होने के कारण रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष सेवा सड़क संपर्क बाधित होने से प्रभावित यात्रियों को राहत देने और कश्मीर तथा जम्मू के बीच सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी। केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म एनिमल से, आवाज विशाल मिश्रा की थी। गीत के बोल राजशेखर के और संगीत विशाल मिश्रा का ही।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म लाल सिंह चड्ढा से, आवाज़ें अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की थी। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत प्रीतम का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
4: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
4: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
4: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत, सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये गाना
1: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
1: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं, गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना

इस धुन को सुनकर सुनने वाले के पांव न थिरके, ऐसा कोई बिरला ही होगा। हिंदी फिल्म संगीत के, खास तौर पर पुरानी फिल्मी गीतों के चाहने वालों में से शायद ही कोई होगा जिसने ये गीत ना सुना हो। जिस फिल्म का ये गीत है उसके निर्माता, निर्देशक और नायक की हम बात करने वाले हैं। इस कलाकार को हम क्या कहें, एक्शन हीरो, रोमांटिक हीरो, कॉमेडियन, ये कलाकार था ही अलबेला। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है भगवान दादा की।

भोली भाली सूरत मगर दिल के सच्चे थे भगवान दादा। पहलवानी के शौक के कारण सभी उन्हें दादा कहकर बुलाते। भगवान दादा का जन्म महाराष्ट्र में 1 अगस्त 1913 को हुआ। वास्तव में उनका नाम था भगवान आबाजी पालव। एक मिल मजदूर का बेटा भगवान बचपन से ही फिल्मों के सपने देखा करता। हालात से मजबूर भगवान दादा को बहुत जल्द पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मुंबई आकर वो मजदूरी करने लगे और करने लगे तकदीर के बदलने का इंतजार।

मुंबई आकर भगवान दादा जब फिल्मों में काम पाने का प्रयास करने लगे तब मूक फिल्मों का जमाना था। किसी फिल्म निर्माण कंपनी में मजदूरी के साथ साथ वो छोटी छोटी भूमिकाएं भी करने लगे। अपने काम के साथ साथ भगवान दादा फिल्म निर्माण की प्रक्रिया में पूरी तरह से डूब गए। बतौर अभिनेता उनकी सबसे पहली फिल्म थी क्रिमिनल, जो एक साइलेंट यानी मूक फिल्म थी। 1938 में बनी फिल्म बहादुर किसान का उन्होंने सह निर्देशन किया। 1938 से 1947 तक भगवान दादा लो बजट की स्टंट और एक्शन फिल्में बनाते रहे, जो मजदूर वर्ग में काफी लोकप्रिय थीं। उस दौरान यानी 1941 में एक उल्लेखनीय तमिल फिल्म उन्होंने बनाई वन मोहिनी, जिसमें एम के राधा और श्रीलंका की अभिनेत्री थवमणि देवी ने भूमिकाएं अदा की। 1942 में भगवान दादा ने फिल्म निर्माण कंपनी बनाई जागृति पिक्चर्स। फिल्म निर्माता तो बन गए मगर कमोबेश मुफलिसी का दौर अब भी जारी था।

0: राम जी।
1: और लॉटरी लगी, सवा लाख की नहीं बल्कि लाखों की। 1947 की बात है, जागृति पिक्चर्स के लिए चेंबूर्स में जागृति स्टूडियो का इंतजाम किया गया। राज कपूर की सलाह पर भगवान दादा ने एक सामाजिक फिल्म के निर्माण की तैयारी की। नायक तो वो स्वयं थे ही, नायिका के रूप में उस समय की मशहूर अदाकारा गीता बाली को चुना गया। फिल्म के संगीत का जिम्मा उठाया भगवान दादा के जिगरी दोस्त सी रामचंद्र ने। रुपहले पर्दे पर फिल्म आई अलबेला। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और इस फिल्म की अपार सफलता ने भगवान दादा का जीवन बदल कर रख दिया। सी रामचंद्र के संगीत में बंधे गाने बेहद लोकप्रिय हुए। इन गीतों का शोला कुछ ऐसे भड़का कि सुनने वालों के दिल आज तक धड़क रहे हैं।

फिल्म अलबेला के गीतों की एक और खास बात यह है कि जिन गीतों पर नृत्य किया है भगवान दादा ने, उनके साथ डांस करने वाले बाकी कलाकार असल में नर्तक नहीं थे बल्कि स्टंट्समैन थे, जो आमतौर पर भगवान दादा के साथ एक्शन फिल्मों में मारधाड़ वाले दृश्यों में भाग लेते थे। तो अलबेला के ये खासियत भरे बाकी गीत भी सुन लेते हैं।

अलबेला की सफलता का स्वाद चखने के बाद उसी टीम के साथ भगवान दादा ने 1953 में फिल्म बनाई झमेला, जिसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली। उसके बाद भगवान दादा ने एक और फिल्म बनाई लाबेला, जिसके निर्माण में उन्होंने अपनी ज्यादातर दौलत झोंक दी, मगर यह फिल्म बुरी तरह पिट गई। किस्मत ने उनसे फिर किनारा कर लिया।

आगे अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए भगवान दादा छोटी छोटी चरित्र भूमिकाओं में दिखने लगे। ये फिल्में थी झनक झनक पायल बाजे, चोरी चोरी और मिस बॉम्बे। गरीबी ने अपना रंग कुछ ऐसा बिखेरा कि जुहू बीच पर बना 25 कमरों वाला बंगला बेचना पड़ा। किसी जमाने में हफ्ते के सातों दिन वो अलग अलग मॉडल की कार से जाया करते। वो सातों गाड़ियां बिक गईं। भगवान दादा के सभी सहकारी उन्हें छोड़कर चले गए सिवाय सी रामचंद्र, ओम प्रकाश और राजेंद्र कृष्ण के। 4 फरवरी 2002, दादर की एक चौल में बने दो कमरों के मकान में ये अलबेला कलाकार भगवान को प्यारा हो गया। कभी

0: अलबेले कलाकार भगवान दादा पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम अभी आपने सुना। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़ी ही देर में प्रस्तुत होगा छाया गीत। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: धुआं धुआं से एक ख्वाब को हमने मचलते देखा है, एक चांद को जमीन पर चलते हमने देखा है। कतरा कतरा पिघली थी जब चांदनी, उसे तुम्हारे रूप में ढलते हमने देखा है। आंखों के काजल से खींची हैं ख्वाबों की लकीरें, लबों की सुर्खियों से रंग भरे हैं ख्वाबों में। तूने यादों के मौसम को सजाया है इस जिलमन में और लिख दिया है मोहब्बत दिल की मीनारों पर।
1: ये जो

सितारों की रोशन रात है, दामन में खिले हैं फूल बेहिसाब, नूर की बूंद है तू या है मुजस्सिम चांदनी, आफताब की किरण है या है मोहब्बत की रोशनी। आंचल तेरा महकता साया, संगमरमर की है तेरी काया, तेरी पलकों की साए में दिल को पनाह मिलती है, जब उतरती है तुम्हारी यादें दिल के आंगन में तो धड़कनों में कई हसरतें पलती हैं। पैरहन का अंदाज तुम्हारा जैसे चांदनी ओढ़ी हो चांदनी, जैसे तुझ में सारा नूर सिमटाया। दूर उस मोड़ पर जब भी नजर आती है तू तो दिल कह उठता है, लो चांद निकल आया।

बादलों पर चलकर चांद में ढलकर एक हुस्न मेरे सामने है, आफताब में नहाया हुआ सा, कुछ कहकशा में समाया हुआ सा। न जाने कब से इन नजरों को ख्वाहिश थी तेरे रूबरू दीदार की, न जाने कब सी हसरत थी तेरे हर अंदाज को पलकों की झालरों में समेट लेने की। तेरी उम्मीद मेरी जिंदगी है, तेरी आरजू मेरा अरमान है, तू खूबसूरत तस्वीर है मेरी मोहब्बत की। हाँ ये सच है, तू ही मेरी जान है।

0: अंतराल के बाद आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं छाया गीत। वो तेरी एक याद पुरानी, जैसे हो चांदनी रात सुहानी। वो तेरे मेरे प्यार की बातें, जैसे हो कोई परियों की कहानी। कुछ ख्वाब सुनहरे, कुछ वादे पक्के, तेरे साथ चलने के इरादे सच्चे। संजोकर साथ ले जाऊं तेरी सारी यादें। तुम चली गई हो जब से, तन्हा है हर मोड़ मोहब्बत के रास्तों का। मेरी हसरतों का, मेरे जज्बातों का, मेरी ख्वाहिशों में तेरे अरमान जिंदा रहेंगे सदा। तेरी महफिल में मैं रहूं ना रहूं, तेरे साथ रहेंगी सदा ये मेरी वफा।
1: तुम अगर

अगर कभी चांद को देखकर मेरी याद आ जाए तो बस एक कतरा मुस्कुरा देना, मैं वहीं कहीं मिल जाऊंगा, सितारों की चमक में, ठंडी हवाओं की झुन में, रात की खामोशियों की

सरगम में, हर पल तेरे एहसासों के समंदर में। जब भी तेरी आंखें आसमान को तलाशेंगी, मैं किसी टूटते तारे की दुआ बनकर उतर आऊंगा। जब भी तेरा दिल तन्हा होगा, मैं तेरी धड़कनों में एक मीठी सी सदा बन जाऊंगा। चांद की चांदनी, सितारों की रोशनी हर रात तेरा पता बताती रहेगी। तू बस सदा मुस्कुराती रहना, मेरी मोहब्बत तुझे हर पल गले लगाती।

लब खामोश हैं मगर निगाहें सब कह जाती हैं। तू सामने होता है तो मेरी धड़कनें मुस्कुराने लग जाती हैं। कितनी ही बार चाहा कि तुझसे सब कुछ कह दूं, मगर हर बार मेरी शर्म मेरी मोहब्बत से जीत जाती है। तू पूछे तो कह दूं तुझसे, मेरी हर दुआ में तू शामिल है, मेरे हर ख्वाब की पहली सुबह और हर रात की आखिरी दुआ भी तू ही है। मैंने तुझे चाहा है बिना किसी शोर के, जैसे चांद चुपचाप रात को रोशन करता है, जैसे खुशबू बिना आवाज के फूलों में महकती है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.9 MHz पर महफिल सजी है हर सिंगार की सदाबहार गीतों की वो महफिल जिसे आप बेहद पसंद करते हैं और सदाबहार की इस महफिल में सदाबहार गीतों की इस महफिल में ये लगभग था किशोर कुमार साहब और लता जी की बेहद खूबसूरत आवाज़ों में फिल्म शर्मिली से और ये फिल्म आई थी 1971 में जिसे लिखा था नीरज ने और बेहद खूबसूरत संगीत से सवारा था सचिन देव बर्मन साहब ने। तो हर सिंगार की इस महफिल में आज इतना ही, मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए।

0: जाए राह।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में 1000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MP स्थापित किए गए हैं। आज मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
1: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में NDA सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबित।

समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य संगठनों को मिली विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि जांच की जा रही है कि विदेश से प्राप्त राशि का इस्तेमाल कैसे किया गया, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी समानांतर जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर राशि का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया गया है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 12 स्वर्ण, 16 रजत और 8 कांस्य पदकों सहित कुल 36 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुधंती चौधरी और सचिन सिवाच ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।